0: आप आज खुद भजन क्लबिंग में यहाँ पर पहुँचे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जमकर वो झूमे, कैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं? और आपके संगीत पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर झूम रहे थे तो वो एहसास कैसा था?
1: देखिए, सत्य बताऊँ तो मैं बहुत लेट पहुँचा यहाँ पे, और जब मैं पहुँचा तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और प्रधानमंत्री जी जा चुके थे, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनको देख नहीं पाया सामने से, क्योंकि वो तो हम सब के, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि वो देश के लिए जिस समर्पण से काम करते हैं और सबके बारे में इतना सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम तो उनसे मिलना चाहते थे, तो पहली बात तो हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरे टाइम हम लोग वो लाइव देख रहे थे।
0: जब पीएम खुद, वो विजुअल आपने भी देखा होगा, हमने सबने देखा, वो खुद यहाँ पर जब वो भजन यहाँ पर थे और वो खुद झूम रहे थे, वो एहसास, वो फीलिंग, वो कैसी थी? आप खुद, आप तो देखते हुए आ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो गाने थे वो उसी मूवी के हैं जो इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई।
1: बिल्कुल, देखिए क्या है कि उनका इस तरह से स्टेप लेना कि वो आए, कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपने हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे थे, झूम रहे थे, और जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों के बीच में बच्चे बन गए हैं। तो ये क्या है ना, ये एक मेरे समझ से कि एक जो एक सिद्ध संत होता है ना, वो कर सकता है, मेरे लिए तो वो सिद्ध संत जैसे ही हैं।
2: Alright, now moving on to important updates coming in. Now the CEC versus the opposition fight is getting louder, bigger and increasingly political. Congress is stepping up its attack on the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, with the opposition pushing a fresh removal motion and a possible criminal complaint and even a joint India bloc strategy. And now the DMK appears to be moving closer to the opposition position on this very issue, with MK Stalin's party likely to join the opposition's offensive against the Chief Election Commissioner. Significantly, BJP allies like Chirag Paswan and RLD's KC Tyagi are calling for the Election Commission to clear the air and address any public doubts. But the BJP has thrown its weight firmly behind Gyanesh Kumar, with Bengal BJP Chief Samik Bhattacharya even making a Padma Bhushan pitch for him. Amid the face-off, ECI sources say that SI

0: आप आज खुद भजन क्लबिंग में यहाँ पर पहुँचे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जमकर वो झूमे, कैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं? और आपके संगीत पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर झूम रहे थे तो वो एहसास कैसा था?
1: देखिए, सत्य बताऊँ तो मैं बहुत लेट पहुँचा यहाँ पे, और जब मैं पहुँचा तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और प्रधानमंत्री जी जा चुके थे, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनको देख नहीं पाया सामने से, क्योंकि वो तो हम सब के, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि वो देश के लिए जिस समर्पण से काम करते हैं और सबके बारे में इतना सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम तो उनसे मिलना चाहते थे, तो पहली बात तो हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरे टाइम हम लोग वो लाइव देख रहे थे।
0: जब पीएम खुद, वो विजुअल आपने भी देखा होगा, हमने सबने देखा, वो खुद यहाँ पर जब वो भजन यहाँ पर थे और वो खुद झूम रहे थे, वो एहसास, वो फीलिंग वो कैसी थी? आप खुद, आप तो देखते हुए आ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो गाने थे वो उसी मूवी के हैं जो इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई।
1: बिल्कुल, देखिए क्या है कि उनका इस तरह से स्टेप लेना कि वो आए, कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपने हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे थे, झूम रहे थे, और जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों के बीच में बच्चे बन गए हैं। तो ये क्या है ना, ये एक मेरे समझ से कि एक जो एक सिद्ध संत होता है ना, वो कर सकता है, मेरे लिए तो वो सिद्ध संत जैसे ही हैं।
2: Alright, now moving on to important updates coming in. Now the CEC versus the opposition fight is getting louder, bigger and increasingly political. Congress is stepping up its attack on the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, with the opposition pushing a fresh removal motion and a possible criminal complaint and even a joint India bloc strategy. And now the DMK appears to be moving closer to the opposition position on this very issue, with M.K. Stalin's party likely to join the opposition's offensive against the Chief Election Commissioner. Significantly, BJP allies like Chirag Paswan and RLD's K.C. Tyagi are calling for the Election Commission to clear the air and address any public doubts. But the BJP has thrown its weight firmly behind Gyanesh Kumar, with Bengal BJP Chief Samik Bhattacharya even making a Padma Bhushan

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द बिगेस्ट डिफेंस लाइनअप, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, नेवी चीफ एडमिरल स्वामीनाथन, एयर मार्शल तेजपाल सिंह, इंडिया'स टॉप मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक माइंड्स ऑन वन मेगा प्लेटफॉर्म, एनडीटीवी डिफेंस समिट 27 सितंबर, न्यू दिल्ली।
1: नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: हेलो एंड वेलकम टू एप्पल पार्क। आई एम सो थ्रिल्ड टू बी हियर टुडे। एवरी डे पीपल अराउंड द वर्ल्ड रिलाई ऑन आवर प्रोडक्ट।
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
0: A generation with questions.
5: The study and the whole glamorous side of it.
6: As I said, like I can't empathize with it.
0: Unconventional.
7: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
0: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
8: Aspirational.
0: The ideas. The issues.
9: You really are.
0: The young view.
9: Public perception.
0: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
1: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
2: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
3: Gold rush on the field.
0: Go for glory, only on NDTV. It takes years to build your competitive edge. On the golf course, it can disappear in a single stroke.
4: Because the course plays no favourites.
0: It only cares about your last shot.
5: After the grand success of the first edition, India's premier golf pro-am is back, where the best in golf meet the finest names in business. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee-off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
6: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened.
0: This year at the Asian Games, viewers, India's multi-sport footprint is expanding into unfamiliar territory. The nation is securing podium finishes in disciplines that have been historically, it has been out of reach for India, proving it can rise to the occasion on any surface now. Mixed martial arts, that is where Suchika Tarial clinched a historic bronze, delivering India's first ever medal in the sport at the Games. Over on the water, the rowing contingent defied odds to secure crucial placements despite late crew adjustments. But while the surprises build momentum, traditional strengths continue to save the day. In shooting, you had Kamaljeet and Suruchi Singh struck gold in the 10-meter air pistol mixed team final with a spectacular score of 484.6 points. On the cricket pitch, the women's team dominated their campaign to lock down an early gold. By combining these core victories with breakthrough combat and water sports, India is steadily turning raw potential into balanced continental leaderboard presence.
1: Roshi, pehle sabse pehle apna medal dikha do NDTV ke darshakon ko. Very proud medalist. Do baar unhone silver medal hasil kiya hai Asian Games se.
7: I'm very proud of to my parents. They are farmer, but हमेशा हम लोग को जो भी कमियां नहीं देने के लिए लगातार मेहनत करता है.
8: We fought till the very last target, despite having some crazy rounds and some crazy stations in the middle. But we gave it our all and we are happy to go back home with a medal.
9: पूरा हम कॉन्फिडेंस थे कि जो इस बार एशियन गेम्स में जरूर एक मेडल हम जरूर लेना है. तो सर को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे हर टाइम में, हर ट्रेनिंग में. तो बस यही सर का जो कॉन्फिडेंस है मेरा स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे ताकत मिलते हैं. तो बस मैंने भी ट्राई किया कि इस बात तो पक्का मुझे जरूर एक मेडल जरूर इंडिया के लिए देना है.
10: मिक्स टीम में नाम आ गया तो मेरे को अब तो एक मौका और है, मतलब इसका भी मेडल का. तो इसमें मैं अपना बेस्ट करूँगा और मैं किया तो आ गया मैं मेडल.
11: इस कमबैक के असली हकदार मेरे कोच और मेरी मम्मी हैं, जिन्होंने मेरा दिमाग रीसेट करने में मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करी है. वरना मैं एकदम इस वाले मैच में भी लास्ट मैच का फील लेती रहती और मैं ये इस मैच में भी अपना परफॉर्म नहीं कर पाती.
1: तो लास्ट मैच के बाद आप भी काफ़ी मायूस हो गए थे?
11: बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इतना स्कोर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था.

0: आप आज खुद भजन क्लबिंग में यहाँ पर पहुंचे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जमकर वो झूमे। कैसे ये सारी चीजें देखते हैं और आपके संगीत पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर झूम रहे थे तो वो एहसास कैसा था?
1: देखिए, सत्य बताऊं तो मैं बहुत लेट पहुंचा यहाँ पे, और जब मैं पहुंचा तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और प्रधानमंत्री जी जा चुके थे, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनको देख नहीं पाया सामने से, क्योंकि वो तो हम सब के, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि वो देश के लिए जिस समर्पण से काम करते हैं और सबके बारे में इतना सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम तो उनसे मिलना चाहते थे। तो पहली बात तो हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरे टाइम हम लोग वो लाइव देख रहे थे।
0: जब पीएम खुद, वो विजुअल आपने भी देखा होगा, हमने सबने देखा, वो खुद यहाँ पर जब वो भजन यहाँ पर थे और वो खुद झूम रहे थे, वो एहसास, वो फीलिंग वो कैसी थी? आप खुद आप तो देखते हुए आ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो गाने थे वो उसी मूवी के हैं जो इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई।
1: बिल्कुल, देखिए क्या है कि उनका इस तरह से स्टेप लेना कि वो आए, कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपने हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे थे, झूम रहे थे, और जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों के बीच में बच्चे बन गए हैं। तो ये क्या है ना, ये एक मेरे समझ से कि एक जो एक सिद्ध संत होता है ना, वो कर सकता है। मेरे लिए तो वो सिद्ध संत जैसे ही हैं।
0: पीएम यहाँ पर खुद पहुँचे, उन्होंने आप सबके साथ इस भजन क्लबिंग को एंजॉय किया, क्या सोचते हैं उनके बारे में, कनेक्ट होने की आप सबसे कोशिश कर रहे हैं?
2: हाँ, वो अब जेन ज़ी के लिए बहुत ज़्यादा अपडेट है, मतलब इंस्टाग्राम पे भी, सोशल पे बहुत ज़्यादा अपडेट है। पहले वो रील नहीं बनाते थे, अब रील भी बनाने लग गए। वो
3: कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ एक भजन क्लबिंग के फंक्शन में आ रहे हैं, ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत शॉर्ट में कहूँ मोदी जी ने क्या किया, तो मोदी जी ने क्लॉकेट कर दिया, क्लॉकेट कुछ पूछू मोदी जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
4: मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जेंजीज को माइथोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये क्लबिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है। और हमें नहीं पता था कि पीएम आने वाले हैं, सो व्हेन ही एंटर्ड इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट, हम लोगों को गूज़बम्प्स भी आ गया, तो बहुत ही अच्छा था।
5: स्वयं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आए हैं यूथ से कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपको पता ही है, जैसे कि आजकल बड़ा ही हिप हॉप हो गया, हो गया, हम बड़े साइडलाइन हो रहे हैं अपने ट्रेडिशनल इन सब से लेके, हमारे जो रूट्स हैं उनसे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कनेक्ट करने के लिए यार।
6: व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गोज भजन क्लबिंग, द इन फैक्ट ऑपोजिशन

0: और वातावरण खराब करते हैं और भाग जाते हैं।
1: राहुल गांधी डिप्रेशन में है, लगातार 100 हारों के बाद कुंठित मानसिकता से द्वेषपूर्ण राजनीति को करते हुए वो बयानबाजी कर रहे हैं। ना तो उनके पास कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तथ्य पेश कर पाए, तथ्यविहीन आरोप लगा रहे। पूरी दुनिया के अंदर भारत का इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के लिए जाना जाता है और राहुल गांधी जी 10 लाख बूथों पर कांग्रेस के बूथ इंचार्ज बैठे हैं, BLA 2 बैठे हैं, उन्होंने कोई इतराज नहीं किया।
2: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं। आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं? गणेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए। सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है जी, इतना दिन बाद इंटिमिडेशन का बाहर ला करके, कोई भी हत्या की घटना नहीं, लोगों को वोट डालने दिया गया। और एक बॉर्डरिंग स्टेट पे जैसे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का नाम वोटर लिस्ट पे था, उसको बाहर निकाला गणेश कुमार ने। पश्चिम बंगाल की जनता कभी ऐसा चुनाव देखा है? तो इसलिए जो कुछ किया गणेश कुमार जी, पूरा पश्चिम बंगाल की आम जनता का आशीर्वाद उसका साथ है और हम तो चाहते हैं उसको पद्म पुरस्कार से भूषित किया जाए।
3: अगर लोगों में भ्रम फैला है तो जो सर्वोच्च संस्था है उसके जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, दे मस्ट कम क्लीन ऑन इट, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और इसकी ट्रांसपेरेंसी की बड़ी प्रतिष्ठा है।
4: Well, NDTV's managing editor Shiv Arora spoke with senior advocate and former Attorney General of India Mukul Rohatgi about the opposition's furore over the Election Commission officer. Let's also listen into what he had to say.
5: I'm now joined by senior advocate and former Attorney General of India Mukul Rohatgi. Thank you very much, sir, for your time. My first question: the opposition, as you know, is now preparing another removal motion. I wanted your opening thoughts on this entire case, sir.
6: According to me, the answer is an emphatic no. No impeachment motion can be moved on these kind of allegations, which are completely vague and which are bereft of any strong facts or reasons. Now let me explain. From whatever I have read in the Indian Express, it appears that 14 administrative notes were apparently made by the two other ECs and sent to the CEC. Assuming that to be correct, these are internal notes. They can be notes of dissensions. They can be discordant notes. But ultimately, the commission speaks through a multi-member body where each member has one vote. If it is 2-1, majority wins. So finally, if the EC issues a unanimous order, then it means that the discordant notes have been synchronized and have been ironed out. And finally, what appears officially is one single unanimous order. There is no question of basing any case, much less an impeachment case, on internal notes which have the character of administrative notes, assuming them to be correct. Let me give you the closest example. Every day we argue cases in the court where there is a bench of 3 judges, 5 judges, 7 judges. In open hearings, very often 2 groups are formed within the bench. One with one side, one with one side. We expect that there will be a dissension in the final judgment. But 99% when final judgment is delivered, there is complete unanimity. What does that mean? It means that when judges think aloud, they think in one form or the other. But when they go inside and discuss, either they convince each other or they take a middle line and they iron out their differences and come out in a uniform voice. If that is not possible for some reason,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द बिगेस्ट डिफेंस लाइनअप डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, नेवी चीफ एडमिरल स्वामीनाथन, एयर मार्शल तेजपाल सिंह, इंडिया'स टॉप मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक माइंड्स ऑन वन मेगा प्लेटफॉर्म, एनडीटीवी डिफेंस समिट 27 सितंबर, न्यू दिल्ली।
1: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day people around the world rely on our products.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Congress party has yet again mocked and insulted Bharat's illustrious civilizational legacy and heritage of bhajan and bhakti. But what better can you expect from Congress sycophants like Mr. Junior Karge, who are only conversant with singing the praises of the self-serving Nehru Gandhi family? Junior Karge talked about accountability. Does Junior Karge even have a smidge or an iota of courage and talk about clubbing the accountability of Rahul Gandhi and his dismal leadership, which has resulted in the Congress party losing more than 100 assembly elections and being routed in 3 consecutive Lok Sabha elections?
1: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है. भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है. पर देश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे, उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं, उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना. तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए, सारा दिन यही काम करिए. प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले. महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं? अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे हैं, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे. तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीज़ों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता है.
2: All right, so controversy over the Prime Minister's bhajan clubbing event in Delhi. With that, we'll slip into a short break. Coming up on the other side is Automate. Stay tuned.

0: Now, does that look familiar? Well, if it does, then you and I are among the approximately 8.3 billion people in the world who just don't have enough time. Now, whether it's at work or at home, our days are spent constantly racing the clock. But while we're busy chasing deadlines, errands, and the to-do lists, what are we leaving behind? Modern life has made parents' time poor, and nowhere is this felt more acutely than inside our homes.
1: Extremely difficult to manage time for myself, and most importantly with the family, from commute and working hours combined together, usually it's up around 13 hours a day. We hardly get time for ourselves, and obviously the personal choices and our own passion actually pushes to the bottom list.
2: 5 baje uthna, pani bharna, khana peena, banana, bachcho ka alag, hamara alag. Meri beti 3 saal ki ho gayi, mujhe pata nahi laga. आप मानोगे बेटी मैंने 8 महीने की डाली थी, अब वो 1.5 साल की हो गई है, मुझे पता नहीं चला।
3: मैं घरों में खाना बनाने का काम करती हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत ही बिजी रहती है। खाना बनाना, दोपहर का भी करना, और फिर साथ साथ में बच्चों का भी ध्यान रखना, फिर अपना करना, तो दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कब 4 बज गए, कब 5 बज गए।
4: आई थिंक कैसे 8 बजते हैं पता नहीं चलता है, और वीकडे नॉर्मली 0 टाइप ही मिलता है, और इसीलिए वीकडे पे हम ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही छोड़ के आते हैं बच्चों को।
5: काफ़ी लेट टाइम मिलता है, रात को ही मिलता है, जो भी मिलता है सोने से पहले वही टाइम दे पाते हैं, अदरवाइज संडे जो हमारा ऑफ होता है उस दिन टाइम मिलता है।
3: बच्चों को संभालें या काम घर का करें, तो ये तो दोनों नहीं हो पाते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर छोड़ जाओ, तो अपना घर का काम जो होता है वो कर लो।
6: I think one of the biggest challenge that parents actually face today is they really want to be present, but they're unable to, because we're constantly being pulled in many different directions, whether it's work, whether it's household responsibilities, whether it's tech and digital or entertainment or WhatsApp groups or on our phones. We are constantly scheduling the next thing. We're never in the present. And there's always that something that's demanding our attention in that present moment.
0: यहाँ पर देखिए सर, क्योंकि ना हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर, है ना, अल्पसंख्यक बोल दीजिए, गरीब बोल दीजिए, हर तरीके के लोग होते हैं। तो चुनौती तो उनके पास यही है कि एक तो उनके पास ना समय नहीं है, आते ही वो गांव छोड़कर यहाँ पर आए हैं, कमाने खाने के लिए ही आए हैं, तो अपना सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, पूरा दिन उनका मतलब सिर्फ काम में ही बिजी रहता है। कोई कहीं काम करता है, कोई किसी तरीके में काम करता है, लेकिन बिजी बहुत रहते हैं। तो समझते वो भी हैं कि टाइम की कमी है बच्चों के लिए, उनके पास समय नहीं है, बट मजबूर है वो भी, क्योंकि कमाएंगे खाएंगे नहीं तो फिर घर कैसे चलाएंगे।
7: इफ टाइम इज फाइनाइट, हाउ डू वी अनलॉक इट? We can't magically create a 25th hour in the day, but there are hacks and tips to create and manage time and stop low priority clutter from stealing the hours we do have.
8: I think time poverty is a state of mind. I mean, I've actually felt that as I've gotten older, I have adequate time. A lot of people look at me and say, Mother, CEO, you must be so busy. You know, you've done Shark Tank, you've done this, you've done that. And I think while lives are busy, I feel I can give adequate time to work and adequate time to home. The secret

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अ जनरेशन with questions,
1: the starry and the whole glamorous side of it.
2: As I said, like, I can't empathize with it.
0: Unconventional.
3: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
0: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
4: Aspirational.
0: The ideas, the issues.
5: You really are.
0: The young view.
5: Public perception.
0: NDTV Yuva, 28 September 2026. Only on the NDTV network.
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
7: It takes years to build your computer.
8: क्योंकि बचपन is great.
7: We're back to tell you about the Bachpan is Great Hour. Taking the Bachpan is Great Hour pledge is remarkably simple. Nothing to organize, nothing to buy, just three steps. Step 1, give the hour. Choose any day between October 2nd and 8th. Spend one full hour with a child, either your own or a child in your community. They decide what you will do together and you just follow. Step 2, look back. Once the hour ends, reflect on what naturally unfolded, whether it was creativity, storytelling, nature play, or quiet bonding without anyone planning for it. Step 3, share the moment. Post a photo or video using hashtag BachpanIsGreatHour. Email us or send a WhatsApp voice note describing the wonder you spotted.
9: So parents या कोई भी एडल्ट जो है एक बच्चे के अराउंड, वो उस बच्चे से पूछे वो क्या करना चाहते हैं और उस बच्चे को लीड करने दे, बट पेरेंट्स को उनके साथ बस उसका हिस्सा बनना है उस जर्नी का। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बच्चा बोल सकता है कि मेरे को पार्क में घूमने जाना है, या कोई बोल सकता है मेरे को रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, या कोई मेरा बेटा है तो वो बोलता है कि मेरे साथ लेगो बनाओ। सो इस टाइप से बच्चा डिसाइड कर रहा है उसको किस चीज़ में मज़ा आएगा, बच्चा डिसाइड कर रहा है वो क्या करना चाहता है, और जो भी एडल्ट है, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो कोई यंग कॉलेज के लड़के या लड़कियां हो जो अपने आसपास किसी बच्चे को देख रहे हैं, उसका हिस्सा बने। सो लेट द चाइल्ड लीड एंड द एडल्ट्स फॉलो इन एन अनइंटरप्टेड, फॉर एन अनइंटरप्टेड वन आवर। बचपन मनाओ में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं 8 वंडर्स ऑफ चाइल्डहुड। तो एक बच्चे के 8 वंडर्स हैं, प्ले है उसमें, एक सोशल बॉन्डिंग है, क्रिएटिविटी है, ऐसे 8 वंडर्स हैं। और ये प्लान करके नहीं आते, बचपन के 8 रंग एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, और ये प्लान करके नहीं देखे जा सकते। तो बेसिकली इस पूरे एक्टिविटी में आइडिया ये है, बचपन इज़ ग्रेट आर में आइडिया ये है कि आप 1 घंटे आपने एक बच्चे के साथ समय बिताया, उसकी गतिविधि का आप हिस्सा बने, और उसके बाद आप उस एक्टिविटी के बाद आप एक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें थी, क्या प्ले था, क्या क्वाइट टाइम था, क्या सोशल बॉन्डिंग थी, क्या क्रिएटिविटी थी। तो अपने आप ही एक ही गतिविधि में, एक बच्चे के एक सिंगल एक्टिविटी में कई सारे पहलू हमको बचपन के देखने को मिलते हैं। तो उसको ऑब्जर्व करना, वो 8 वंडर्स ऑफ चाइल्डहुड में से कौन कौन सी चीज़ें हमको दिखाई दी। दूसरा, कोशिश ये करना है कि वो एक्टिविटी उनके फोटोग्राफ के लिए नहीं है, वो एक्टिविटी मेरे लिए एज एन एडल्ट उसका इस हिस्सा बनने के लिए, लेकिन शेयर करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वो एक कोई दूर का एक शॉट हो सकता है, या वो जो एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी का शॉट हो सकता है, या बच्चे का साइड से शॉट हो सकता है, पीछे से कुछ हो सकता है, बिना कंसेंट के ना हो। अगर आप कोई संस्था है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या कोई कॉरपोरेट है, या फिर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, या कोई एनजीओ है, तो उनके लिए 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि क्या हम अपने संस्था के द्वारा अपने आसपास जितने भी एडल्ट्स हैं, हमारे टीम में, हमारी संस्थाओं में जो एडल्ट्स हैं, उनको इनक्रेज कर सकते हैं टू डू एन वन टू स्पेंड वन इन अनइंटरप्टेड आवर विद अ चाइल्ड। और दूसरा ये कि क्या हम अपने यहाँ ऐसे स्पेसेस होल्ड कर सकते हैं जिसमें बच्चे और एडल्ट एक साथ आ सकें, या फिर एक कॉरपोरेट हो गया जिसने अपने यहाँ, जनरली कॉरपोरेट्स में होता भी है, फैमिली डेज होते हैं, सो कॉरपोरेट ने होस्ट कर लिया अपने यहाँ, कि भाई बच्चे आए एंड पेरेंट्स आए.
4: सो निहाल गाओ रे.
7: The Bachpan is Great Hour isn't just an invitation for parents at home. It's a movement for everyone. Organizations, workplaces, schools, NGOs, neighborhoods can all step up to anchor the hour. For more details on how you can get involved, log on to ndtv.com/bachpanmanao.
10: We hope you will all create your own Bachpan is Great Hour. 1 hour of undivided attention for children around you. And after that hour, reflect on what naturally unfolded. The creativity, the laughter, the masti, and the quiet moments. Then tell us which wonder you spotted. You can post a photo with hashtag BachpanIsGreatHour. You can email us at bachpanmanao@gmail.com or WhatsApp a voice note on this number. So this Daan Utsav, pledge your hour. Give your children the one gift money can never buy. Your full, undivided presence.

0: देखिए सीईसी का जहां तक सवाल है, पूरे देश को ने देखा है कि जो राहुल जी ने सवाल खड़े किए, उन तमाम तर सवालों के जवाब आज देश ने देख लिए। सीईसी ने देश को तबाह और बर्बाद कर दिया।
1: बहुत महान काम कर रहा है आपकी सरकार, को वोट चोरी कर करके लोगों के वोट 13 करोड़ के काट के इतना महान काम किया कि आपकी सरकार और प्रधानमंत्री जी उस पद पर बैठे हुए ज्ञानेश कुमार की वजह से बैठे हुए हैं, है ना। तो भारत रत्न की मांग क्यों नहीं कर रहे? मजाक बना दिया है इन्होंने इस तरह के पदों को, और सम्मान जो मिलता था, है ना, उनके कोई इतिहास, कोई बैकग्राउंड, कोई योगदान होता था तब ये पदक मांगे जाते थे, ये मांग की जाती थी कि इन्हें दिया जाए और दिए जाते थे। लेकिन आज तो मजाक हो गया है, बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी गणेश कुमार जी को भारत रत्न पहना रहे हैं और गणेश कुमार भारत प्रधानमंत्री जी के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं और दोनों एक दूसरे के गले में डाल रहे हैं, मजाक हो चुका है।
2: बगैर तथ्यों के और बगैर किसी आधिकारिक बयान के, ना किसी की स्पष्टीकरण मांग का, उसके बावजूद एक समाचार पत्र ने खबर छापी और उस खबर को देखकर अगर विपक्ष प्रदर्शन करना चाहता है, हल्ला करना चाहता है, भ्रम फैलाना चाहता है, तो मैं इतने कहूँगा वो अपनी हार पर पर्दा डालना चाहता है, आत्मचिंतन नहीं करते, केवल बहाना ढूंढते हैं कांग्रेस और विपक्षी दल की हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए।
3: इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ डिमांडिंग बाय एनी पार्टी और एनी लीडर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, that is important. What is the ground reality, what is going on inside the election commission, the difference what we are watching in the media, that what is the real fact, that has to come out by these members.
4: नहीं पता, मैं सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। ऐसे में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है, कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का काम है राजनीति करना, आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे। पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये, ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।
5: राहुल गांधी डिप्रेशन में है, लगातार 100 हारों के बाद कुंठित मानसिकता से द्वेषपूर्ण राजनीति को करते हुए वो बयानबाजी कर रहे, ना तो उनके पास कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तथ्य पेश कर पाए, तथ्य विहीन आरोप लगा रहे। पूरी दुनिया के अंदर भारत का इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के लिए जाना जाता है और राहुल गांधी जी 10 लाख बूथों पर कांग्रेस के बूथ इंचार्ज बैठे हैं, BLA 2 बैठे हैं, उन्होंने कोई इतराज नहीं किया।
6: So the opposition there uniting against the chief election commissioner. Mamata Banerjee even spoke to MA Baby over this. The CPM alleging the poll process was subverted. Remember, Mamata Banerjee and the left have been at loggerheads, have been rivals for 3 decades now, but this is uniting them as well. And now the BJP has reacted to this with the BJP saying that Mamata, Dilip Ghosh saying Mamata once refused to talk to the left, and now that she is talking to them, let's listen in to what the BJP has said.
7: ममता बनर्जी को बुलाते थे लोग, बात करते वो बात नहीं करती थी, आज मामला उल्टा है इसलिए वो बात कर रहे हैं उनको कि बुलाया जाए। अब यहाँ रोल नहीं है तो वहाँ रोल प्ले करेंगे, लेकिन वहाँ भी कौन है, कहाँ है एंडी जोट, कौन कहाँ है, अब उसको ढूंढे जाके पहले।
6: Well, let's go across to Shreshi now for more. And Shreshi, Mamata Banerjee reaching out to the left, you know, they've been rivals for decades now over this entire controversy regarding the chief election commissioner. The BJP

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: For many girls in India today, menstrual health is still shrouded in stigma and silence. This lack of access to resources and information is affecting not just their confidence, but their participation in everyday life. Through Project Mahi, Herbalife is aiming to change just that by giving them
1: schools and Anganwadi centers, primarily supporting students from grades 8 to 10. The program combines access to menstrual hygiene products with age-appropriate health education, recognizing that lasting change requires both resources and knowledge.
2: प्रोजेक्ट माही से जुड़ने से पहले मुझे पीरियड के बारे में जानकारी थी मगर उतना भी ज़्यादा नहीं था. बाद में जब आए सुरेंद्र सैलेंदर सर तब उन्होंने हमें बताया कि पीरियड्स में हमारे अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए. हम लोग जो स्कूल नहीं जाते पीरियड्स में वो हम लोग को स्कूल जाना चाहिए, वो ज़रूरी है हम लोग के लिए. बहुत सी बातें हम लोग को उन्होंने बताई, पहले हम लोग को इतना जानकारी नहीं थी.
3: मम्मी बोलती थी कि पापा से मत बताना, भैया से मत बताना, पैड्स मांगना है या कपड़ा लेना है तो मुझसे बताना. लेकिन जब हम लोग सैलेंदर सर से मिले इस प्रोग्राम के थ्रू, हमें बताया कि नहीं, ये शर्माने की बात नहीं है, ट्रस्टेड पर्सन है, उसे किसी से भी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें पैड्स की ज़रूरत है और हमें आपका साथ चाहिए.
0: अटेंडेंस में कुछ फ़र्क थी देखा है, जैसे पीरियड्स के टाइम पे भी आप अभी स्कूल आ सकते हैं?
3: तो हम लोग स्कूल एब्सेंट करते थे, नहीं जाते थे पीरियड्स में, लेकिन प्रोग्राम होने के बाद पीरियड्स में खेलते भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, क्लास एब्सेंट नहीं करते हैं.
0: अभी ये प्रोग्राम के थ्रू सेहत के बारे में आपको कितना जानकारी हुआ है और आप जो दूसरी लड़कियाँ हैं जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे?
2: पीरियड्स बिल्कुल नेचुरल है, इससे शर्माने वाली कोई बात नहीं है. मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो भी है वो सबको इसके बारे में शर्माने की ज़रूरत नहीं है. अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स या फिर टीचर्स या ट्रस्टेड पर्सन को बताना चाहिए उन्हें.
3: पहले हम लोग तो दोस्त से भी नहीं बात करवाते थे, ना फ्रेंड से, ना दोस्त से या करीबी आदमी से, कि ये हमें दर्द हो रहा है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कितने टाइम पैड बनना चाहिए. ये सर ने बताया तो हम खुल के यहाँ की वार्डन और अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स और अपने भाई से भी बात कर पाते हैं. अगर हमें ज़रूरत रहती है पैड्स की तो उन्हें दे भी पाते हैं. और मैं दूसरे लड़के को संदेश देना चाहूँगी कि वो भी ना शर्माएं, अपनी खामोशी को तोड़े और जब भी ज़रूरत पड़े तो अपने ट्रस्टेड पर्सन से सलाह लें.
0: Change happens when what was once a difficult topic now becomes a point of conversation. Through Project Mahi and through education and awareness, these girls are able to break the silence and stigma around menstrual health, make better informed choices and take charge of their own health.
4: Project Mahi chalne ke pehle ladkiyon mein jhijhak thi, wo bol nahi pati thi, yahan tak ki school mein bhi nahi bolti thi aur ghar mein bhi nahi batati thi कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ है, पेट दर्द कर रहा है या फिर किसी

0: For para-athletes, that support can be particularly important, creating an ecosystem that allows talent to develop and compete at the highest level.
1: Every athlete has a story to tell. Some are stories of resilience, others of sacrifice. But what really unites all of them is the belief that limits are meant to be challenged. Let's meet some of these remarkable athletes who are being strengthened through the Para Champions program. ये जो आपका जर्नी है पैरा स्पोर्ट्स में, आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं?
2: मैं कह सकता हूँ कि जो जर्नी है वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी. 2014 में मैं फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में 3 मेडल मिले. 2016 पैरालंपिक खेलने का अवसर मिला और मैं एक फर्स्ट इंडियन ब्लाइंड एथलीट बना जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो.
1: ये जो प्रोग्राम है जो आप कर रहे हैं उससे आपको क्या मदद मिली है एंड हाउ इज़ इट रियली बेनिफिटेड यू?
2: देखिए, जिस प्रोग्राम के साथ मैं जुड़ा हूँ, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसमें पैरा चैंपियन प्रोग्राम है जिसके नाम में छुपा है कि जो पैरा एथलीट्स को चैंपियन बनाने का है. 2014-15 से इस प्रोग्राम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ. और बात करूँ जैसे कि अभी ट्रेनिंग करने में एक सिर्फ हमारा डेडिकेशन या हमारा हार्डवर्क की आवश्यकता नहीं रहती. हमें पूरा टीम वर्क, उसमें हर तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट और जितने भी हमारे ट्रेवल्स हैं उनका अकोमोडेशन, वो सारी चीज़ देखने के लिए इस पैरा चैंपियन प्रोग्राम ने ही हमें बहुत ज़्यादा हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिका अदा की है. ये प्रोग्राम्स जब तक बढ़ते रहेंगे तो एथलीट्स अपने गोल्स को इसी तरह पूरा करते रहेंगे.

0: Welcome. It's 4 p.m. and you're watching NDTV with me, Tanisha Awasthi, and we are coming across to you with a very special broadcast. Well, from the quiet power of faith to the extraordinary journey of a man who became revered as a divine presence, Hanuman Ansh has clearly struck a chord far beyond the usual boundaries of cinema. And the film is bringing the life, the teachings and the legacy of Neem Karoli Baba to the screen. And today, I'm being joined by the crew of Hanuman Ansh. Shobhinav, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Ragini, thank you very much. She's one of the co-producers of the film. And Shobhinav, I want to start with you. आप जो बजट था वो फिल्म का वो 3 करोड़ के आसपास था और अब हिस्ट्री बना दी है इस मूवी ने. करीब करीब 300 करोड़ के पार जा चुकी है. पहला रिएक्शन आपका उसी पे लेना चाहूँगी.
1: देखिए, बजट तो थोड़ा सा और कम था 2 करोड़ के आसपास का था. और ये मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग नंबर्स नहीं देख रहे हैं. मेरा तो वैसे भी काम नहीं है, मैं तो एक्टर हूँ, मेरा तो वैसे भी काम नहीं है नंबर्स देखना. लेकिन जिनको देखना चाहिए, प्रोड्यूसर्स, तो वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर, वो भी नंबर्स नहीं देख रहे हैं. रागिनी मैम ने जब इस फिल्म को स्टार्ट किया तब उन्होंने रुपए नहीं देखे, तो अब क्या देखेंगी, बात ही खत्म हो गई. तो वो कभी से इंटेंट हमारा रहा नहीं है. तभी भगवान ने हमारा साथ दिया और बाबा जी ने हमारा साथ दिया, क्योंकि हमारा इंटेंट बहुत प्योर था कि बाबा की कहानी को लोगों के दिलों तक पहुँचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है. तो अभी तो और भी चीज़ें होंगी. जी
0: रागिनी जी, बहुत लोग नीम करोली बाबा के बारे में नहीं जानते थे पहले. इस मूवी के बाद जब मैं कुछ इंटरव्यूज़ भी देख रही थी और हमारे ही चैनल पे हमारी एक रिपोर्टर थी, वो धाम भी गई थी नीम करोली बाबा के, और वहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे वो ये भी बोल रहे थे कि पहले इतनी भीड़ नहीं थी, बट इस मूवी के बाद जो भीड़ है वो लाखों करोड़ों में आती जा रही है और ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है. ये जो एक स्टोरी है नीम करोली बाबा की, यू नो, इट स्टार्ट्स विद हिम लूजिंग हिज मदर. And then he goes out and he goes out in the search of Ram. And उनको ये लगता है कि उनको राम मिल गए तो उनको अपनी माँ मिल जाएगी. ये स्टोरी जो है ये बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई थी. आपको क्या थॉट था जब आप इस आपने सोचा कि इनकी स्टोरी हमें एक मूवी में दर्शानी चाहिए, और किस तरीके से आपका आपने क्या सोचा जब आपने ये मूवी इनिशिएट की, जब आपने क्रू से बात की, क्या थॉट प्रोसेस था?
2: मैं कहूँगी कि इस कहानी को जो इनिशिएट किया था वो विशाल चतुर्वेदी ने किया था. पहले उन्होंने मुझे एक छोटी सी एक कहानी सुनाई थी उनके बारे, और उन्होंने कहा था आप करेंगी क्या, मैंने उसी पर कह दिया था कि मैं करूँगी. लेकिन जब उन्होंने मुझे लिटरली स्क्रिप्ट सुनाई तो इट वॉज़ अ गूज बम्प मोमेंट एवरी मोमेंट. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दैट यू नो व्हाट, हाउ अर्ली कैन वी स्टार्टेड, एंड दैट इज़ हाउ दिस फिल्म स्टार्टेड. तुरंत उन्होंने कहा कि हम लोग जल्दी से जल्दी शूट पे जा सकते हैं, उसके बाद वहाँ पे ठंड हो जाएगी, हम लोग नहीं जा पाएंगे. तो एंड एज आई सेड दैट इट वाज नॉट एज इफ आई वाज इवन लुकिंग एट मनी, एज शोभना वेरी वेल सेड दैट एंड पुट इट. सो आई थिंक इंटेंट, वो बहुत बहुत बड़ी बात है कि इंटेंट ये कभी था ही नहीं कि एक कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं. इंटेंट ये था कि बाबा की कहानी लाखों करोड़ों लोग तक कैसे पहुंचेगी, और बाबा खुद पृथ्वी पर उतर आए दिखाने के लिए कि ऐसे पहुंचेगी.
0: बिल्कुल,
2: वो सबसे बड़ी बात है. आई थिंक मैं हमेशा मानती हूँ कि माध्यम हम लोगों को बनाया ज़रूर गया. ऑफकोर्स विशाल को माध्यम बनाया गया मुझे ये बताने के लिए कि हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं. मुझे ये माध्यम दिया गया कि भाई चलो फटाफट स्टार्ट करो. बाकी भी जो प्रोड्यूसर्स जुड़ते गए, जैसे मतलब लोग जुड़ते गए और कारवां चलता रहा, वैसे ही मतलब पता चला कि बाबा तो पिक एंड चूज कर रहे हैं, और जिससे भी हम लोग मिल रहे हैं वो सब भाव से जुड़े हुए हैं. जिन्होंने भी फिल्म में काम किया वो सब भाव से जुड़े हैं. हम सब एक ही शहर को बिलोंग करते हैं. इनफैक्ट जो हमारी दूसरी कैरेक्टर है जिन्होंने इनके राम बेटी जी का रोल किया है पार्वती, वो भी लखनऊ से है, मैं भी लखनऊ से हूँ, शोभना भी लखनऊ से है. मतलब मैं लखनऊ की बात नहीं कर, मैं यूपी की भी बात कर रही हूँ, उत्तराखंड की भी बात कर रही हूँ. सब लोग और सब बाबा के बारे में जानते थे और सब कहीं ना कहीं भाग. तो ये मेरे ख्याल से हम लोगों को माध्यम जो बनाया गया है वो बाबा ने ही माध्यम बनाया हम लोगों को, और ये कार्य सौंप दिया जिसमें कि अगर हम लोग सफल हुए हैं तो वो भी उन्हीं की कृपा है. और लोगों ने जो साथ दिया है इसमें, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा सबसे कह रहे हैं कि भाई तुम भी करो, तुम भी करो. पब्लिसिटी तो लोगों ने ही कर दी, हम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. एक एक जन उसकी रील बना रहा है. सो आई मस्ट से दैट माध्यम हम लोगों को जरूर.
1: हम लोग कहते हैं कि ये ना लोगों ने, लोगों को लगता है ये उनके घर के किसी पर्सन की मूवी, की उनके फूफा की मूवी है, चाचा की मूवी है, उनके भाई की मूवी है. तो लोगों ने इस मूवी को इस तरीके से अडेप्ट किया है कि ये उनके घर की किसी इंसान ने ये मूवी बनाई, इसको प्रमोट करना है उस तरह से.
0: मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगी. अराउंड 2-3 ईयर्स बैक मैंने सोचा कि मैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने जाती हूँ, और ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस था नहीं, स्टोरियाँ सुनी थी, बहुत सुनी थी, एंड कहते थे कि मिरेकल्स होते हैं, ज़रूर होते हैं. तो जब हम लोग जा रहे थे, मैं और मेरा फ्रेंड्स ग्रुप, कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग का प्लान कैंसिल होते होते रह गया, एंड लैंडस्लाइड आ गई थी, कभी कुछ हो गया था, कभी हम लोग को होटल बुकिंग्स नहीं मिल रही थी. बट पता नहीं क्या हुआ, वो जब बोलते हैं ना, व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट टू रीच एट वन प्लेस, और तभी कुछ ऐसा होता है कि आप पहुंच जाते हैं. हमें नहीं पता हम कैसे गए, कैसे पहुंचे हम उस रास्ते, बस हम पहुंच गए और हमने उन्हें दर्शन किए. बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ भी सुनी हैं जहाँ आपके साथ भी मिरेकल्स हुए हैं, टीम के साथ भी हुए हैं. क्या आप उसके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे, क्या क्या आपको एक्सपीरियंस करने को मिला जब आप पूरी ये फिल्म शूट कर रहे थे?
1: देखिए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जैसे आपने बताया ना कि आप वहाँ पे किस तरह से पहुँची, तो हमारे मूवी के सर्वे सर्वा हमारे डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी जी, वो उनका एक्सपीरियंस ऐसा ही था कि वो भी अचानक अपनी कार से 20 साल पहले जा रहे थे, और वो अचानक से किन कंडीशंस में, वो चमत्कारी मतलब एक लीला ही थी उनको. अचानक से उनकी कार रुकती है और वो गेट के सामने रुकती है. तो ऐसे ऐसे इसी माध्यम से बाबा अपने दर पे बुलाते हैं, अपने अपने मंदिर में बुलाते. बताऊँ तो वो जो वानर थे, जब हम मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तो अचानक से एक लंगूर वानर का आ जाना वहाँ पे, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही थी हनुमान जी की. देन मेरा अपने आप में सिलेक्शन, ये मेरे लिए, मतलब फिल्म के लिए नहीं, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए तो वो एक तरह का एक लीला ही है, एक बाबा का चमत्कार ही कह लें, या मतलब चमत्कार से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा लीला. तो वो मेरे साथ भी हुआ, और अचानक से एक रात बैलगाड़ी आ गई और वो हमारे फिल्म सेट पे यूज़ हो गई. देन मतलब कई मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं कि हमारी ट्रेन अचानक से हो जाना जब हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और पूरी यूनिट का वहाँ पर पहुँच जाना, और कुछ छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस, उसको लोग नाम दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो भी कहीं ना कहीं डॉट्स ही हैं जो कनेक्ट हुए कि हमारा ऑफिस जानकी सेंटर में है, और हमारा जो लखनऊ वाला ऑफिस है वो जानकीपुरम में है, और हम जानकी कुंड में हमने 6 दिन तक शूट किया. चित्रकूट जिस जिले में, जहाँ पे हमारी पूरी फिल्म शूट हुई वो था चित्रकूट, और वो जिस ज़िले में आता है वो है सीतापुर. तो सीतापुर, जानकी कुंड, जानकी सेंटर, ये कहीं ना कहीं माता सीता जो है यहाँ पे अपना उनका पूरा प्रभाव था, इसीलिए इस फिल्म में सीताराम जो था वो पूरी दुनिया में गूंज रहा है.
0: जी, इनफैक्ट आपकी कास्टिंग की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. व्यूअर्स, लेट मी टेल यू, इनिशियली ही वाज नॉट सपोज टू बी द लीड रोल, बट कुछ ऐसा हुआ, कुछ वेरी अनफॉर्चुनेट हैपेंड ऑफ कोर्स, एंड द पर्सन हु वाज सपोज टू प्ले द लीड रोल, ही फेल इल, एंड उसके बाद आपको जाके कास्टिंग मिली. क्या आपने कभी ये एक्सपेक्ट किया था कि आपको इस लीड रोल में कास्ट करेंगे? एंड कितने लोग, तो आई हैव सीन रिएक्शंस ऑन ट्विटर, so many people are saying that you know he represents Neem Karoli Baba, unko dekh ke hi aisa lagta hai ki baba aa gaya samne. Aapka wo kya story thi, kaise aapki casting hui, and kis tarike se aapne is cheez ko liya?
1: Dekhiye, matlab jab hum film industry mein kaam karne jate hain to sapne to bade lekar jate hi hain, hai na? To sapno ki duniya mein hum Mumbai mein jate hain, to sapna to tha ki haan bade parde pe aaye, lead character bhi play karenge. लेकिन इतना जल्दी झटपट ऐसे वैसे होगा, और शुरुआत बाबा से होगी, ये सब नहीं सोचा था. ये तो मतलब बियॉन्ड है. तो वो फिर वो ऐसा लगता है कि बाबा ही सब कुछ लिख रहे थे हमेशा से, और उन्होंने ये मौका दिया. तो मतलब अब अच्छा भी लगता है कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया, और ब्लेस्ड फील होता है कि भगवान आपने जैसी कृपा की है हमेशा ऐसे ही रखिएगा, और अच्छा ही लग रहा है अभी तो.
0: रागिनी जी, आई वांट टू कम टू यू ऑन दैट. एक बहुत इनसाइड स्टोरी हमें पता चली थी, वी गॉट टू नो दैट द रूल्स ऑफ द सेट वर वेरी स्ट्रिक्ट, इट वाज कंप्लीट वेजिटेरियन डाइट, यू नो इट, द वेकिंग अप टाइम, द कॉल इन टाइम, इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक इट हाउ इट हैपेंस. व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट, एंड हाउ डिड यू गाइस अडैप्ट टू दैट सिचुएशन, एंड हाउ डिड यू गाइस इवन थिंक ऑफ यू नो वी शुड हैव अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, कीपिंग इन माइंड दैट यू नो वी आर शूटिंग अ मूवी दैट इज spiritually very aligned?
2: That we of course knew from the very beginning when Vishal was telling me the story, and I knew from then Vishal very well, and I knew that he would go on fruit diets, yeah. He would be keeping fast, which I was also like that, and we used to message each other, aaj ye hai iska fast rakh lena, aaj wo hai uska aisa kar lena. So that was how we were connected, dharmik way mein bhi, aur har तरीके के भाव में. तो जब विशाल ने फिल्म शुरू करी थी तो सबसे पहले विशाल ने कहा था कि न तो शूट के ऊपर किसी भी तरह का नॉन वेज या अल्कोहल, वो तो खैर बिल्कुल ही मना थी, और सब लोग जो है सात्विक जो खाने का वो सारा सेवन करेंगे. और हमारे जैसे कि सेट्स पर नॉर्मली होता है कि एक नॉन वेजिटेरियन होता ही है डिश, और वो हमारे यहाँ बिल्कुल उसका वो हुआ था. और जो हमारे सप्लायर थे खाने के, वो खुद भी, उनका जो रेस्टोरेंट था वो भी सात्विक था. बहुत बड़ी बात है.

0: और चित्रकूट एक जगह है जिसमें धर्म और मतलब भाव का एक ऐसा समन्वय है कि आप जब जाते हैं उस सिटी में, यू कम टू नो दैट यू हैव एंटर्ड अ प्लेस विच हैज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. इट इज़ नॉट नॉर्मल एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट. व्हेन आई वाज एंटरिंग चित्रकूट आई न्यू दैट, एंड व्हेन आई वेंट टू द सेट आई had directly gone to the set where this scene was happening, जहाँ पे कि वो एक स्वामी जी हैं जो विहान जो हमारे बाबा का छोटे बाबा का करेक्टर प्ले किया. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट प्लेस एंड आई सेड माई गॉड, इफ विशाल चतुर्वेदी आर डायरेक्टर हैज दिस काइंड ऑफ अ विजन टू गो एंड शूट इन दिस प्लेस वे यू जस्ट कॉन्ट गो रॉन्ग. आप दिखा रहे हैं 1940 के भी पहले का समय और वो बिल्कुल वही लग रहा था. मुझे तो ऐसा लगा मैं कहाँ आ गई. और हम सब उन रूल्स का ऐसे मतलब पालन नहीं करते. आई डोंट थिंक फिल्म वुड हैव लुक्ड द वे इट लुक्ड.
1: एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट. आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अ फिल्म, इट्स अबाउट अडैप्टिंग टू द फिल्म, इट्स अबाउट लिविंग दैट फिल्म व्हेन यू आर शूटिंग अबाउट इट. एंड विद दैट आई वांट टू कम टू वन मोर क्वेश्चन दैट वी सॉ यस्टरडे. आई मीन सो वी वर जस्ट लुकिंग एट आवर स्क्रीन्स कल एंड हमने देखा दैट प्राइम मिनिस्टर वॉज देयर एट दीनदयाल उपाध्याय पार्क एंड वो हाथ में डफली लेके बैठे थे और पार्वती का गाना चला, हनुमान अंश का था. और सभी लोग जो हैं, इवन द यूथ, द जेंजी जो हम बात कर रहे हैं आज, एक तो जेंजी कनेक्ट था वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, ऊपर से भजन क्लबिंग. सो ये जो मिक्सचर था, इनफैक्ट आप भी थे उस इवेंट पे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब भजन क्लबिंग हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे और कितने लोग बोल रहे थे दैट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर, और वो जब आए तब माहौल ही बदल गया. तो भजन क्लबिंग जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अटेंडिंग इट?
2: जी देखिए, इसके दो दो अलग अलग आंसर हैं. पहली बात तो मैं उस जगह पर था तो, लेकिन तब था जब सब चले गए थे, थोड़ा सा लेट पहुंचा था. तो मैम ने वहाँ पे पूरा प्रोग्राम देखा, तो मैम अभी अच्छे से बताएंगी कि कैसा रहा क्या रहा. लेकिन जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है, वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को. और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है. और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना, इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी, वो नहीं है. भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है. हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं. यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा.
1: रागिनी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यू नो I don't want to get into the controversies of it, but of course, like, you know, we were expecting, there has been politics over it about people saying, oh, the Prime Minister is attending bhajan clubbing, it's of no use. But you were there, you were living the moment. It was not just about something that was extravagant, it was not something that was just done for the TV. It was something that the Gen Z was also living it along with the Prime Minister. And since you were there, present at that moment, how was your experience? Did you feel that it was done extravagantly or it was done for, you know, for just for the sake of it?
0: Bilkul bhi nahi extravagantly done, but I would differ because there was nothing extravagant. All of us, we could feel that jo wahan par hum logon ko matlab jis tarike se hum logo treat kiya gaya wo bahut sundar tha. Magar baat ye bhi thi ki jitne log bhi wahan khade the wo bhakti bhav se khade the, unko koi laya nahi tha, wo paise de karke wo crowd nahi laya jata. One, two is that हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में तो ये हमेशा ये रहा है कि वो जंजीर से हमेशा हमेशा कनेक्ट करते रहे.
1: Yes.
0: जैसे कि अभी बहुत बड़ी बात कही है शोभनम ने कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का शुरू से एक ही मतलब युवाओं को साथ लेकर के चलने वाली जो बात थी, उन्होंने कभी भी इस चीज़ से ज़रा भी दराव नहीं किया कि सबको सामने आना चाहिए. और जैसे हमारी परंपरा हमेशा से ही रही कि जो छोटे हैं वो बड़ों का आदर करते हैं. जंजी जैसी कोई चीज़ तो आप शुरू हुई है, हमने तो कभी सुना ही नहीं था अपने ज़माने में कि जंजी भी कोई चीज़ होती है. और जहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो गैप था वो कहीं पर जब शुरू हुआ तो उसको अंत करने के लिए मेरे ख्याल से ये फिल्म ऐसी आ गई कि वहाँ पर लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में जब थिएटर जाना शुरू किया, जो कभी हुआ ही नहीं.
1: बिल्कुल,
0: आई थिंक वहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा था कि वो जो जेंजीज हम लोग कहते हैं उसका तो कहीं अस्तित्व है ही नहीं. वो बच्चे जो खड़े हुए वहाँ पर उस भजन क्लबिंग के साथ में क्लैपिंग कर रहे थे और साथ में प्रधानमंत्री

0: जी का जो ढपली मंगवाना था उन्होंने मंगवाई ढपली जी, और उस पर उन्होंने उसको कुछ और कहते हैं, खंजरी बोलते हैं कुछ और बोलते हैं, वो उन्होंने बजाई साथ में
1: जी, जी।
0: पार्वती गाने के साथ में उन्होंने बाकायदा गाना गाया
1: या।
0: हम लोग ने देखा और वो मेरे लिए गूज़बम मोमेंट से मैं कह रही हूँ तो एक एक पल मेरे लिए गूज़बम था। और मैंने इन लोग से सबसे यही कहा कि तुम लोग शायद वो नहीं देख पा रहे थे जो मैं यहाँ से देख पा रही थी कि इतने इन्वॉल्व थे प्रधानमंत्री जी, और वो उनका कोई दिखावा हो ही नहीं सकता, कोई आदमी दिखावे के लिए काम कर ही नहीं सकता।
1: Absolutely, absolutely. Ragini, thank you very much. Shobhinav ji, thank you very much. And I've been told I'm running out of time, but 30 seconds I want to buy her. And kyunki Parvati gaane ki baat ho gayi hai, kyun na Shobhinav aur Ragini ji aapse bas 30 seconds ke hum sun le wo gana, kyunki absolutely
0: bahut acha gana
1: hai, hitting the screen.
2: Dekhiye ye gana Sadhu Tiwari sir ka hai aur wo hamesha wahi wo jahan bhi jaate hain unse ye gana gawaya jata hai, to abhi wo yahan pe hai nahi, lekin अब चूंकि ये गाना ग्लोबली नंबर 2 पे आ चुका है और इंडिया में तो नंबर 1 पे है, तो एक ऑडियंस की तरह इस गाने के फैन होने के नाते हम गाना गा सकते हैं जी। जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि सप्तऋषि, काए जिद कर रही, काए खुमर रही, काए जिद कर रही, काए खुमर रही, ऐसे वर के लाने जाके शीश पे गंगा, और गले में डारे फिर रे सांप, जाके शीश पे गंगा, और गले में डारे फिर रे सांप, इतने सीधे साधे हैं सब कहते भोलेनाथ।
3: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day people around the world rely on our products.
4: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
5: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.

0: The ideas, the issues, the questions that matter. NDTV Yuva, Young Voices, Bold Dialogues. 28 September 2026. The biggest defense lineup. Defense Minister Rajnath Singh. Defense Secretary Rajesh Kumar Singh.
1: This year at the Asian Games, viewers, India's multi-sport footprint is expanding into unfamiliar territory. The nation is securing podium finishes in disciplines that have been historically, it has been out of reach for India, proving it can rise to the occasion on any surface now. Mixed martial arts, that is where Suchika Tarial clinched a historic bronze, delivering India's first ever medal in the sport at the Games. Over on the water, the rowing contingent defied odds to secure crucial placements despite late crew adjustments. But while the surprises build momentum, traditional strengths continue to save the day. In shooting, you had Kamaljeet and Suruchi Singh struck gold in the 10-meter air pistol mixed team final with a spectacular score of 484.6 points. On the cricket pitch, the women's team dominated their campaign to lock down an early gold. By combining these core victories with breakthrough combat and water sports, India is steadily turning raw potential into balanced continental leaderboard presence.
2: Roshi, पहले सबसे पहले अपना मेडल दिखा दो NDTV के दर्शकों को. Very proud medalist, दो बार उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है एशियन गेम्स से.
3: I am very proud of to my parents and some crazy stations in the middle, but we gave it our all and we are happy to go back home with a medal.
4: पूरा हम कॉन्फिडेंस थे कि जो इस बार एशियन गेम्स में जरूर एक मेडल हम जरूर लेना है. तो सर को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे हर टाइम में, हर ट्रेनिंग में. तो बस यही सर का जो कॉन्फिडेंस है मेरा स्ट्रॉन्ग, मतलब उनसे ताकत मिलते हैं. तो बस मैंने भी ट्राई किया कि इस बार तो पक्का मुझे जरूर एक मेडल जरूर इंडिया के लिए देना है.
5: मिक्स टीम में नाम आ गया तो मेरे को अब तो एक मौका और है, मतलब इसका भी मेडल का, तो इसमें मैं अपना बेस्ट करूँगा. और मैं किया तो आ गया मैं मेडल.
6: इस कमबैक के असली हकदार मेरे कोच और मेरी मम्मी हैं, जिन्होंने मेरा दिमाग रीसेट करने में मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करी है. वरना मैं एकदम इस वाले मैच में भी लास्ट मैच का फील लेती रहती, और मैं ये इस मैच में भी अपना परफॉर्म

0: Congress party has yet again mocked and insulted Bharat's illustrious civilizational legacy and heritage of bhajan and bhakti. But what better can you expect from Congress sycophants like Mr. Junior Karge, who only conversant with singing the praises of the self-serving Nehru Gandhi family? Junior Karge talked about accountability. Does Junior Karge even have a smidge or an iota of courage and talk about clubbing the accountability of Rahul Gandhi and his dismal leadership, which has resulted in the Congress party losing more than 100 assembly elections and being routed in 3 consecutive Lok Sabha elections?
1: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है. भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है. प्रदेश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना. तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए. प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले. महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं. अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे. तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीजों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता था.
2: And just earlier today, the Hanuman Ansh, that movie and their team, they were here in our
3: interview. How was your experience? You know, I don't want to get into the controversies of it, but of course, like, you know, we were expecting, there has been politics over it, about people saying, oh, the Prime Minister is attending bhajan clubbing, it's of no use. But you were there, you were living the moment. It was not just about something that was extravagant, it was not something that was just done for the TV. It was something that the Gen Z was also living it, along with the Prime Minister. And since you were there, present at that moment, how was your experience? Did you feel that it was done extravagantly, or it was done for, you know, for just for the sake of it?
4: बिल्कुल भी नहीं, मैं extravagantly done पर I would differ, because there was nothing extravagant. All of us, we could feel that जो वहाँ पर हम लोगों को, मतलब जिस तरीके से हम लोगों को ट्रीट किया गया वो बहुत सुंदर था. मगर बात ये भी थी कि जितने लोग भी वहाँ खड़े थे वो भक्ति भाव से खड़े थे, उनको कोई लाया नहीं था, वो पैसे दे करके वो क्राउड नहीं लाया जा सकता. वन टू इज दैट हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में तो ये हमेशा ये रहा है कि वो जनजीत से हमेशा हमेशा कनेक्ट करते रहे.
3: yes.
4: जैसे कि अभी बहुत बड़ी बात कही है शोभनम ने, कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का शुरू से एक ही, मतलब युवाओं को साथ लेकर के चलने वाली जो बात थी, उन्होंने कभी भी इस चीज़ से ज़रा भी दराव नहीं किया कि सबको सामने आना चाहिए. और जैसे हमारी परंपरा हमेशा से ही रही कि जो छोटे हैं वो बड़ों का आदर करते हैं. जैसे जनजी जैसी कोई चीज़ तो आप शुरू हुई है, हमने तो कभी सुना ही नहीं था अपने ज़माने में कि जनजी भी कोई चीज़ होती है. और जहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो गैप था वो कहीं पर जब शुरू हुआ तो उसको अंत करने के लिए मेरे ख्याल से ये फिल्म ऐसी आ गई कि वहाँ पर लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में जब थिएटर जाना शुरू किया, जो कभी हुआ ही नहीं था.
3: बिल्कुल,
4: आई थिंक वहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा था कि वो जो जेंजीज हम लोग कहते हैं उसका तो कहीं अस्तित्व है ही नहीं. वो बच्चे जो खड़े हुए वहाँ पर उस भजन क्लबिंग के साथ में क्लैपिंग कर रहे थे, और साथ में प्रधानमंत्री जी का जो ढपली मंगवाना था उन्होंने मंगवाई ढपली, और उस पर उन्होंने उसको कुछ और कहते हैं, खंजरी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, वो उन्होंने बजाई साथ में पार्वती गाने के साथ में, उन्होंने बाकायदा गाना गाया. हम लोग ने देखा और वो मेरे लिए गूज़बम मोमेंट से, मैं कह रही हूँ तो एक एक पल मेरे लिए गूज़बम था. और मैंने इन लोग से सबसे यही

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
1: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
2: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
3: Gold rush on the field.
1: Go for glory, only on NDTV.
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
5: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
6: कुछ इससे भी अनोखा
5: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान

0: आप लुधियाना से?
1: जोधपुर राजस्थान से है।
0: जूनागढ़ गुजरात से आया हूँ।
2: मुंबई गोरेगांव।
3: चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कब आए?
4: हम परसों आए थे, कल हम जिम कार्पेट गए थे और कल नैनीताल हो गए, आज इधर आए।
0: कल रात को निकले, आज पहुंच गए।
1: हम कल ही आए थे ट्रेन से और अभी आज घूम के वापस निकल जाएंगे।
5: They've come from different places. Some left home last night. Some have been here before. Others don't quite know what to expect. But this morning, they're all heading

0: several years since the passing away of Neem Karoli Baba, but people still come here looking for him. Some knew him personally, while others have been coming here for several years now. Many others are only discovering his story now.
1: This is the destination, the holy grail that the pilgrims here seek, Kenchi Dham.
2: जीवन है आज वो बाबा जी का दिया हुआ है. मैं बाबा जी को बार बार प्रणाम करता हूँ.
3: कुछ फैमिली इशू वगैरह कुछ है तो अंदर से हुआ कि वहाँ जाके आए भगवान के, तो सारे सॉल्व हुए, इसलिए फिर हम दोनों आए.
4: मैं सबसे पहले 2019 में आया था, वो भी रैंडम प्लान बन गया था. मैं ऐसे नॉर्मल वीडियो देख रहा था इंस्टा पे, फिर वो नीम करौली बाबा की एक वीडियो आई, फिर मेरा प्लान बन गया. उसके बाद से बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 18 महीने में 10 बार आ चुका हूँ.
5: पहली बार सोच रही थी आने का पर मैं नहीं आ पा रही थी. फिर मुझे गुस्सा आया बजरंगबली के ऊपर, बाबा के ऊपर. मैंने उनको एक जैसे फादर बोलते हैं वैसे उनको चिल्लाया कि आप मुझे बुलाते नहीं हो. फिर अचानक से हमारा अचानक ही प्लान बना जाने का, फिर तब से आ ही रहे हैं. तब से 6 महीने में 5 महीने में चक्कर लग जाता
0: है. स्वर्ग देखना है, ये है हमारा स्वर्ग.
1: And there lies the cutest thing. They know the name, they've been told. They recognize the face, they've seen pictures. Many know the stories, they've heard it often enough. But most people who come here today could never have known the man. The mortal being known as Neem Karoli Baba died in 1973. More than half a century later, it is deep faith and blind belief that make people. Many of them born long after his death make their way here. Faith can move mountains, but the genesis of that faith is not to be found here in Kenchi. To go back to the beginning, the mountains must be removed, the direction of travel changed southwards, 362 odd kilometers towards a small village near Tundla in Uttar Pradesh. Akbarpur, this is where the story begins. It is said that one Lakshman Narayan Sharma was born here around the turn of the 20th century. The record of his early life is mostly hearsay. Much of what is known or popular comes from accounts narrated nearly 3/4 of a century later. The broad storyline that got established was about how Lakshman Narayan Sharma married young, had a family, and spent long periods away from home, travelling as a holy mendicant, a sadhu.
6: लक्ष्मी नारायण नाम था उनका, सुन गाँव का. जब बाबा बने तो लक्ष्मण दास हो गया उनका. उनके हम तो बच्चे ही थे उस समय, उनकी गोद तक मैं खेले जी. जाग बोलिए ये जो उनने अपने हाथ से ही बनवाई थी और यहाँ पर ही उनका स्थान था. जब भी आते थे ब्रह्मल से तो यहीं पर रुकते थे और यहीं पर बैठते थे. और पूरा गांव उनका इज्जत इतनी करता था कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता।
1: His travels, the stories go, took him to different parts of India, and along the way, he came to be known by names as transient as his stay. Then one of them stuck, Neeb Karori.

0: Farukabad district of Uttar Pradesh, there's a village called Neeb Karori. Accounts place Lakshman Narayan Sharma here for an extended period as a resident sadhu. And the name of the village became attached to the man they looked at with holy reverence, Neeb Karori Baba. The surviving images draw a simple picture. A dhoti, a blanket, people around him. The Baba did not leave much in way of his own writing. Much of what is ascribed to him is from the recollections of those who spent time with him.
1: पहली बार आप कब मिले बाबा से?
2: उस टाइम में हम बच्चे थे, मैं कक्षा 2-3 में ही पढ़ता था. ऐसा थे वो हम जैसों को जैसे हम थे. अब ये बच्चे ही हैं, इनसे क्या बात करो ज़्यादा. और वो हंसी मजाक भी करते थे वो हमसे थे. हमसे करते थे कुश्ती लड़ो तुम बाहर से, कुश्ती लड़ो तो जो जीतेगा मैं उसको ये दूंगा, मिठाई दूंगा. हम कुश्ती लड़ते थे, हम छोटे, इससे कुछ बड़ा होगा ऐसे ही होगा.
1: जी जी. आपकी एज क्या थी जब आप पहली बार उनसे मिले थे?
3: मेरी 15 साल की उम्र थी. 1963 में प्रसन्न दर्शन किए.
0: For most people arriving at Kenchi, this is the destination. For the man beside us, it is a place of memory.
3: इंडिया के बाद मुझे पढ़ाई के लिए, हायर पढ़ाई के लिए नैनीताल आना था.

0: लिए हाथ पहुँचना और आसान हो गया, क्योंकि बाबा महाराज कैंची में रहते थे और मैं नैनीताल से आता था, तो मेरे लिए कोई बहुत दुर्गम काम नहीं था, मैं कभी कभी पहुँच जाता था वहाँ। आज आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, इतनी भीड़ नहीं आती थी, लेकिन अच्छा वो माहौल बना हुआ था वहाँ का, बड़ा बाबा जी की महाराज जी के पास बहुत प्रसन्नता वर्धक समय रहता था। दिन भर करा, शाम को गाड़ी से फिर वापस नैनीताल आ गए।
1: मन्नत अपने मांगी और पूरी हुई है
2: मेरी कल। मतलब जब मैं यहाँ पहली बार आई थी ना, तो मेरी लाइफ में चेंज हुआ था। सेकंड टाइम आई थी तो मेरी शादी हो गई, लाइक वो जो मैंने प्रे किया था वही हुआ। और थर्ड टाइम वापस आई हूँ एक और नई विश के साथ।
3: दोस्तों ने बताया था कि उत्तराखंड में नीम करोली बाबा करके महाराज है, वो चमत्कारिक महाराज है। दिसंबर 2020 में मेरा राइट किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से मेरी राइट किडनी समाप्त हो गई, खराब हो गई। वही प्रॉब्लम मेरी दूसरी किडनी में 4 साल बाद शुरू हुआ। मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, दवाई चालू की, बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी अगर दूसरी किडनी में भी यही दिक्कत आती है, यही रोग आता है, तो मुझे मुश्किल, मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा जी ने मेरी प्रार्थना सुनी, 15 दिनों में मेरी जो दिक्कत थी वो मेरी दिक्कत बाबा जी ने संपूर्ण स्वस्थ करके दिक्कत मेरी दूर कर दी।
4: यही मानना था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो वही बाबा ले अर्जी है कि चला दें, बुला दें, और क्या है।
5: जब यहाँ आए पहली बार में जो मन्नत किए थे वो पूरे होने लगी। फिर हर बार मतलब जैसे अपना एक फैमिली का मेंबर होता है, मिलने के बिना नहीं रह सकते, सेम वैसे यहाँ आना स्टार्ट हो गए।
6: स्टोरीज लाइक दिस आर पार्ट ऑफ द मेमोरी सराउंडिंग नीम करोली बाबा। फॉर दोज हु टेल देम देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ फेथ, देयर नॉट क्लेम्स टू बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, acknowledged as articles of belief and not a factual catalogue of miracles. After years of travelling, another road brought him here, to the Kumaon Hills, to a small settlement on the road between Nainital and Almora, Kenchi. In the early 1960s, an ashram began to take shape. The Hanuman Temple at Kenchi was consecrated in June 1964, and Kenchi became most closely associated with Neem Karoli Baba. For years, people came to see him. Today, they come, even though they can no longer see. On September 11, 1973, Neem Karoli Baba died in Vrindavan. The traveler's journey ended. The pilgrims kept coming.

0: पहली बार
1: जब मैं पढ़ता था, जब मैं छोटा सा था तो हमारे स्कूल का ट्रूप आया था, तो हम छोटे बच्चों को लेके नहीं आए थे, पर जब से ही तमन्ना थी मैं बाबा के जाएं।
2: अभी जो मूवी देखा उसके बाद में बाबा का दर्शन करने का मन करा, उसके बाद इच्छा करी इमीडिएटली। लास्ट वीक मैं सब टिकट वगैरह बुक करके आज बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा।
3: ये मेरे अंकल के थ्रू मुझे पता लगा था, उनको भी शायद रील से इंस्टाग्राम के थ्रू पता लगा था, जैसा कि फेसबुक के ऑनर सीईओ मार्क ज़करबर्ग के बारे में, तो बस वहीं से फिर हमने यहाँ पे आना चालू किया था।
4: बाबा के बारे में ऐसे पता लगा हमें कि यूट्यूब पे इंस्टा पे देखा, बाबा की महिमा सुनी, तो हम बहुत प्रभावित हुए।
5: Steve Jobs, who came here searching for Neem Karoli Baba, to Virat Kohli, the names associated with him span across generations as well as continents. Different people, different journeys, but the same strings pull each and every one of them to Kenya.

0: ठीक है बेटा, हम तो बहता पानी है, कहीं भी रम जाएंगे।
1: And now, the story has found another screen. Hanuman Ansh.
2: Swami ho tum, gaadho nata Baba ji.
1: A film inspired by the life and the stories that surround the spiritual journey of Neem Karoli Baba began quietly. Then, people began turning up. A film about a Baba who died more than 50 years ago.
3: मैंने हनुमान अंश मूवी मेरे परिवार के साथ देखी है। ऐसा ही लग रहा था कि साक्षात बाबा ही हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो अनुभूति थी वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता।
4: मूवी देखी थी लास्ट वीक, और मैं मानता नहीं हूँ भगवान में कि कुछ होता है ऐसा, बट मूवी देखी उसके बाद पढ़ा तो लगा कि हाँ कुछ तो होगा जो इतने लोग आते हैं। तो बस
5: अभी तो ये मूवी का क्रेज है तो इतनी भीड़, इतना क्राउड है। बाकी जब मूवी नहीं थी तब इतना कुछ क्राउड नहीं था। हमने अंदर बैठ के सत्संग किया था, सुंदरकांड पाठ किया था।
6: अभी जो मूवी देखा उसके बाद में बाबा का दर्शन करने का मन करा, उसके बाद इच्छा करी।
2: सेवक हम स्वामी हो तुम।
1: द मीडियम चेंज्ड, द स्टोरी केप्ट फाइंडिंग न्यू ऑडियंसेस। And with every new audience, more people found their way here.
7: तो जी इस टाइम सितंबर टाइम चल रहा है, ये एक तरह से ऑफ सीजन माना जाता था। काफ़ी कम भीड़ आती थी, मतलब मुश्किल से 10,000 लोग मतलब दिन में आ जाते थे, लेकिन इस टाइम पे वो देखने को मिला मूवी के बाद से काफ़ी भीड़ हो रही है।
8: महाराज जी कम्बल ओढ़ रखते थे हमेशा, तो ऑफरिंग यहाँ से पहले से भी हम लोग मतलब जैसे दिवाली वगैरह हो गया, कोई ओकेजन है वैसे हम लोग उस टाइम पे ब्लैंकेट्स वगैरह चढ़ाते हैं महाराज जी को, तो वही सारी चीज़ें नॉर्मली चलती हैं, तो पहले से ही हम लोग यहाँ पे ब्लैंकेट बेचते थे। और हाँ, दादी हमारी आज भी कहती है कि महाराज जी कहते थे कि विश्व लौट कर आएगा यहाँ पे, वो रियलिटी है। महाराज जी कह गए थे वो है सच में, वो चेंज हो चुका है, वो चेंज आ गया, पूरा विश्व लौट के कैची ही
1: कैची हैज चेंज्ड। But the reason people come here, perhaps, hasn't.
9: अलग ही पीस मिल रहा है, अच्छी जगह है, और बाबा के दर्शन करके और अच्छा लगेगा, आपको आनंद प्राप्त होगा।
10: बहुत अच्छा और सुकून भरा लगता है यहाँ पे, शांति है।
6: जो लोगों ने बताया था उससे ऊपर यहाँ महसूस हुआ, बहुत ही पॉजिटिव वेव्स यहाँ मिलती है, मुझे बहुत ही अच्छा आनंद हुआ। जय सीताराम।
1: They came here looking for something. What they found is theirs to know.

0: Marshal Tejpal Singh. India's top military and strategic minds on one mega platform. NDTV Defense Summit, 27 September, New Delhi.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: द 20th एशियन गेम्स आर ऑफिशियली अंडर वे इन आईजी नागोया इन जापान। फॉर द नेक्स्ट 16 डेज दिस इज वेयर इंडिया स्पोर्टिंग ड्रीम्स विल प्ले आउट।
7: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
8: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
9: Gold rush on the field.
10: Go for glory, only on NDTV.
11: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani. Are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
12: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
13: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
14: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
15: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, where it...
6: Good evening, hello and welcome. You're watching NDTV, I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. Amid EC rift controversy, the Election Commission has come out with a clarification. They say

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस में। स्मॉल
3: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
5: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
6: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.

0: In shooting, you had Kamaljeet and Suruchi Singh struck gold in the 10-meter air pistol mixed team final with a spectacular score of 484.6 points. On the cricket pitch, the women's team dominated their campaign to lock down an early gold. By combining these core victories with breakthrough combat and water sports, India is steadily turning raw potential into balanced continental leaderboard presence.
1: Roshi, पहले सबसे पहले अपना मेडल दिखा दो एनडीटीवी के दर्शकों को. वेरी प्राउड मेडलिस्ट, दो दो बार उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है एशियन गेम्स से.
2: आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू माय पेरेंट्स, दे आर फार्मर, बट हमेशा हम लोग को जो भी कमियां नहीं देने के लिए लगातार मेहनत करता है.
3: वी फॉट टिल द वेरी लास्ट टारगेट डिस्पाइट हैविंग सम क्रेजी राउंड्स एंड सम क्रेजी स्टेशंस इन द मिडल, बट वी गिव इट आवर ऑल एंड वी आर हैप्पी टू गो बैक होम विद अ मेडल.
4: पूरा हम कॉन्फिडेंस थे कि जो इस बार एशियन गेम्स में जरूर एक मेडल हम जरूर लेना है, तो सर को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे हर टाइम में, हर ट्रेनिंग में. तो बस यही सर का जो कॉन्फिडेंस है मेरा स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे ताकत मिलते हैं. तो बस मैंने भी ट्राई किया कि इस बार तो पक्का मुझे जरूर

0: three election commissioners had a joint meeting, and ECI subsequently highlighted several important points in its public statement.
1: The main reason as to why the election commission went to cabinet secretary was to discuss about a particular officer who had been sent on deputation to the election commission of India. मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है.
2: This is an incredibly grave assault on the functioning of Indian democracy. It has been done apparently on the basis of a number of irregularities, including an illegal modification of Form 6, requiring data that has not been required in the past. They have actually gone ahead and made a number of changes without the consent of two of the three election commissioners, which itself is a violation of the procedures of the election commission.
3: Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal, it is anti-constitutional, it is against our nation, our democracy. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason, and he needs to be tried for treason.
4: All the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे SIR की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे? कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, CPM गई थी और TMC तो दर्जनों केस किया था उन्होंने. तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIR को ओके कहा.
0: A fresh political flashpoint is brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's cryptic warning, Congress not begging, retort, and BJP's attack have put the opposition alliance under a renewed strain. The war of words has now intensified from Ikra Hassan's only Akhilesh pitch to Congress not begging, retort, and Akhilesh cryptic warning. The alliance tensions are spilling into the open. The alliance war is now spilling into a public face-off. Akhilesh SP and Rahul Gandhi to decide the pact. Congress has hit back saying it's not begging for an alliance. That's the word coming in from the two sides. And all of this is happening right before the UP elections are less than few months away.
5: Samajwadi Party aur Congress Party ka gathbandhan jo hai, वो दोनों राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे, अखिलेश जी तय करेंगे. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं, यह केवल दबाव बनाने के लिए आते हैं. कांग्रेस कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यह जगजाहिर है. कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है. अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है. और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी.
6: हम अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं. कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में, वो राहुल जी ने तैयार किया है. राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं. पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है. तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है. अरे छोड़िए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं. जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं, बजाने दीजिए ढोल, क्या फ़र्क पड़ रहा है. इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है. कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे, बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने क्या हुआ था. देखिए हाल, राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे, हम विष भी पियेंगे, हम लेकर के चलेंगे, हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें.
7: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है, ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है. ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे. इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है. और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें तो उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं. आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है.
0: Prime Minister Narendra Modi attended a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on the stage sang devotion songs. Congress has targeted the Prime Minister, alleging that this time he is seen attending a bhajan clubbing event, but he avoids accountability and difficult questions on the public platform.
8: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है. भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है. प्रदेश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना. तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए. प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले. महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं. अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे हैं, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे. तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीज़ों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता था.
9: This is never against Indian culture. It has been part of it and it is part of it and it will remain part of Indian culture and tradition. The issue is of people who are doing wrong to the country and trying to cover up by attending such functions and diverting the mind of people from issues, very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.
0: And just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios and they were also present yesterday at the Bhajan Clubbing event. Here's their take on the event.
10: Aur sabhi log jo hain, even the youth, the Gen Z, jo hum baat kar rahe hain aaj, ek to Gen Z connect tha wahan pe, Prime Minister bhi the, upar se Bhajan Clubbing. So ye jo mixture tha, in fact, aap bhi the us event pe. Kaisa raha aapka experience jab Bhajan Clubbing ho rahi thi, Prime Minister the wahan pe aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister. Aur wo jab aaye, tab mahol hi badal gaya. The Bhajan Clubbing जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट?
11: जी, जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है, वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को. और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है. और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना, इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी, वो नहीं है. भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है. हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं. यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा.
0: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK in its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
12: அன்பு குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு ஜெம் வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்வு பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில்தான் நடிக்கிறார் என்று சொன்னால் நிஜ வாழ்க்கையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்.
13: yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreactive and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court did not accept.

0: and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM, when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon, and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
1: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
2: A political phase off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
3: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल राज चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
4: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন.
5: দেখি আগার বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা. কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, হামারে উপর বোম ফেঁকে যাতে, আগার সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেঁকতে.
6: কুনাল ঘোষ কে উপর যো হামলা হুয়া হে ও বিজেপি নে নেহি কিয়া হে, কিউকি বিজেপি কা যো অধ্যক্ষ হে और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिलकर बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है. ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये. और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चबाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है.
7: हमें यह विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ. आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था. यह कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए.
8: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है. ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है. ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा.
2: Well, that story and much more goes up on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.
9: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
10: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
11: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.

0: towards Kathmandu. There's a helicopter right there.
1: Trishuli Nadi ka ye wo ilaka hai.
2: In Nepal's darkest hour, being there mattered.
3: Baki jo log is waqt missing hain, unke bare mein aapke kya chalta hai?
2: At any cost, across the devastation, through the impossible.
4: नीचे अगर हम जूम कर हम आपको दिखा सके उस सुरंग में फंसे लोगों
2: टू मेक श्योर नेपाल वाज हर्ट बियॉन्ड द हेडलाइन
5: रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशंस कंटिन्यू हियर
6: जो हैंगिंग ब्रिजेस बने थे वो भी सब कुछ बह गए
2: बिकॉज़ व्हेन इट रियली मैटर्स वाचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस इज नॉट एन ऑप्शन एनडीटीवी व्हेन इट रियली मैटर्स दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टेन Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. Voices that redraw boundaries.

0: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
1: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting.
0: Hello and welcome. You're watching NETV. I'm Anusha Sonia. Quick check of the headlines first. Amid ECI rift controversy, the Election Commission has come out with a clarification. They say all major decisions on SIR were approved unanimously. Congress criticizes the ECI clarification, questioning its response on Form 6, ECI Net and 97 Goa voters. Party says key questions raised remain unanswered. MTMC MLA Kunal Ghosh alleged that stones and eggs were hurled at his car in Hooghly while he was heading to a party meeting. He later lodged a complaint at Alipur police station. Mamata blames BJP. BJP meanwhile denies any role. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav posts a cryptic message amid Congress versus SP rift ahead of UP elections. Says sword should remain sheathed until the battle begins. And India completed a golden double in Kabaddi with both men and women team beating Iran in their respective final. Women won 37-34. Men defeated Iran 40-34 to retain their Asian Games title. The latest news coming in, the BJP president Nitin Naveen has backed Election Commission's clarification that decisions related to the SIR were taken unanimously by the full commission. His remarks come amid opposition criticism following reports of objections raised by two election commissioners during internal deliberation. The ECI has maintained that such observations are part of normal decision-making process and that the final decisions were unanimous. My colleague Aishwarya with us on the broadcast. Aishwarya, give us perspective. BJP president making a statement on the latest EC press note.
2: Well, that's right. In fact, Bharatiya Janata Party had earlier stated remember, in Kerala, the minister in charge over there, who is a Congress leader, in fact, backed the SIR process, and several of their Congress leaders, including Shashi Tharoor as well, backed the SIR process. But it is the Congress leadership who had been showing hypocrisy in a sense when the same electoral process delivers victories to Congress and its allies, including the states of Kerala and Tamil Nadu. Its credibility is readily accepted. But when the people's mandate goes against them, then certainly they question the constitutional validity of the commissions like Election Commission, who works according to the democracy and its rules and regulations. So Nitin Naveen, Bharatiya Janata Party president, after the press note that was issued by the Election Commission of India, which stated that every such decision has been taken unanimously. In fact, a picture was released today after a meeting that was held between the three election commissioners. It is Nitin Naveen who stated that the opposition has once again been exposed for misleading right. The public. Certainly, the decisions that were made by the Election Commission in terms of SIR was unanimous in nature, but Congress chose to build allegations around manufactured lies and attack the constitutional bodies.
0: Right. Thank you. Thank you, Aishwarya, for getting us all the details on that story. Now, the Election Commission of India held a meeting at Nirvachan Sadan in New Delhi with Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Election Commissioners Dr. S. Sandhu and Dr. Vivek Joshi in attendance. The Election Commission, in its press note, has detailed the timeline of the SIR exercise and said that the relevant decisions were taken with the unanimous approval of the Commission. ECI further said that the SIR orders issued covering Bihar, West Bengal, 30 other states and UTs were unanimously approved. Congress, meanwhile, criticized the EC, describing the situation as a grave assault on Indian democracy. The party alleged that citizens have been deprived of their right to vote and questioned the modification of Form 6. BJP pointed out that three election commissioners held a joint meeting and ECI subsequently highlighted several important points in its public statement.
3: The main reason as to why the Election Commission went to Cabinet Secretary was to discuss about a particular officer who had been sent on deputation to the Election Commission of India. मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
4: This is an incredibly grave assault on the functioning of Indian democracy. It has been done apparently on the basis of a number of irregularities, including an illegal modification of Form 6, requiring data that has not been required in the past. They have actually gone ahead and made a number of changes without the consent of two of the three election commissioners, which itself is a violation of the procedures of the election commission.
5: Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal, it is anti-constitutional, it is against our nation, our democracy. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason and he needs to be tried for treason.
6: All the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. Supreme Court ne pure SIR ki prakriya ko challenge karte hue kaun log gaye the? Congress party gayi thi, Communist party gayi thi, CPM gayi thi और टीएमसी तो दर्जनों केस किया था उन्होंने। तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIR को ओके कहा।
0: A fresh political flashpoint is brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's cryptic warning, Congress not begging, retort, and BJP's attack have put the opposition alliance under a renewed strain. The war of words has now intensified from Iqra Hasan's only Akhilesh pitch to Congress not begging, retort, and Akhilesh cryptic warning. The alliance tensions are spilling into the open. The alliance war is now spilling into a public face-off. Akhilesh SP and Rahul Gandhi to decide the pact. Congress has hit back saying it's not begging for an alliance. That's the word coming in from the two sides, and all of this is happening right before the UP elections are less than few months away.
7: Samajwadi party aur Congress party ka gathbandhan jo hai wo dono rashtriya neta tay karenge, Rahul ji tay karenge, Akhilesh ji tay karenge, lekin jo Congress party ke netaon ke betuke bayan aa rahe hain yah keval dabav banane ke liye aate hain. Congress कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में ये जगजाहिर है. कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है. अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी.
8: हम अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं. कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में वो राहुल जी ने तैयार किया है. राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं. पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है. तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है. अरे छोड़िए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं. जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं, बजाने दीजिए ढोल, क्या फ़र्क पड़ रहा है. इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है. कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे, बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने क्या हुआ था. देखिए हाल, राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे, हम विष भी पियेंगे, हम लेकर के चलेंगे, हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें.
9: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है. ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे. इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है. और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें तो उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं. आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है.
0: Prime Minister Narendra Modi attended a Bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on the stage sang devotion songs. Congress has targeted the Prime Minister, alleging that this time he is seen attending a Bhajan clubbing event, but he avoids accountability and difficult questions on the public platform.
10: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है. भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है, पर देश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना। तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए। प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे हैं, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे। तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीज़ों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता है।
11: कांग्रेस इज नेवर अगेंस्ट इंडियन कल्चर, इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ इट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ इट एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। द इशू इज ऑफ पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग टू द कंट्री एंड ट्राइंग टू कवर अप by attending such functions and diverting the mind of people from issues, very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.
0: And just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios and they were also present yesterday at the Bhajan clubbing event. Here's their take on the event and the political controversy.
12: Heard that Prime Minister was there at Deen Dayal Upadhyay Park and he wo haath mein dafli leke baithe the aur Parvati ka gana chala, Hanuman Ansh ka tha, aur sabhi log jo hain, even the youth, the Gen Z jo hum baat kar rahe hain aaj, ek to Gen Z connect tha wahan pe, Prime Minister bhi the, upar se bhajan clubbing, so ye jo mixture tha, in fact aap bhi the us event pe, kaisa raha aapka experience jab bhajan clubbing ho rahi thi, Prime Minister the wahan pe aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister aur wo jab aaye tab mahol hi badal gaya, the bhajan clubbing जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट?
13: जी, जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है, वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को, और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है, और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना। इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी वो नहीं है, भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है। हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं, यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा।
0: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK and its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
14: அன்பாவாலும் குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை, நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில் தான்
11: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreactive and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court did not accept and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like
15: like CM when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon, and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
16: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
0: A political face-off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh's car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
17: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल राज चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
18: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন.
19: দেখি আগার বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা. কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, হামারে উপর বোম ফেঁকে যাতে, আগার সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেঁকতে.
20: কুনাল ঘোষ কে উপর জো হামলা হুয়া হে ও বিজেপি নে নেহি কিয়া হে, কিউকি বিজেপি কা জো অধ্যক্ষ হে और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिलकर बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह

0: आचरण नहीं कर रहा है, ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये, और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चबाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है।
1: हमें ये विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ। आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था। ये कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए।
2: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है। ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है। ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा।
3: Well, that story and much more goes up on our website ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.
4: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
5: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
6: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.

0: supplies, including the states of Kerala and Tamil Nadu, its credibility is readily accepted. But when the people's mandate goes against them, then certainly they question the constitutional validity of the commissions like Election Commission, who works according to the democracy and its rules and regulations. So Nitin Naveen, Bharatiya Janata Party president, after the press note that was issued by the Election Commission of India, which stated that every such decision has been taken unanimously. In fact, a picture was released today after a meeting that was held between the three election commissioners. It is Nitin Naveen who stated that the opposition has once again been exposed for misleading right. the public. Certainly, the decisions that were made by the Election Commission in terms of SIR was unanimous in nature, but Congress chose to build allegations around manufactured lies and attack the constitutional bodies.
1: Right. Thank you. Thank you, Aishwarya, for getting us all the details on that story. Now, the Election Commission of India held a meeting at Nirvachan Sadan in New Delhi with Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Election Commissioners Dr. S. Sandhu and Dr. Vivek Joshi in attendance. The Election Commission, in its press note, has detailed the timeline of the SIR exercise and said that the relevant decisions were taken with the unanimous approval of the Commission. ECI further said that the SIR orders issued covering Bihar, West Bengal, 30 other states and UTs were unanimously approved. Congress, meanwhile, criticized the EC, describing the situation as a grave assault on Indian democracy. The party alleged that citizens have been deprived of their right to vote and questioned the modification of Form 6. BJP pointed out that three election commissioners held a joint meeting and ECI subsequently highlighted several important points in its public statement.
2: The main reason as to why the Election Commission went to Cabinet Secretary was to discuss about a particular officer who had been sent on deputation to the Election Commission of India. मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है.
3: This is an incredibly grave assault on the functioning of Indian democracy. It has been done apparently on the basis of a number of irregularities, including an illegal modification of Form 6, requiring data that has not been required in the past. They have actually gone ahead and made a number of changes without the consent of two of the three election commissioners, which itself is a violation of the procedures of the Election Commission.
4: Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal, it is anti-constitutional, it is against our nation, our democracy. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason and he needs to be tried for treason.
5: All the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे SIR की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे? कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, CPM गई थी और TMC तो दर्जनों केस किया था उन्होंने. तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIR को ओके कहा.
1: A fresh political flashpoint is brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's cryptic warning, Congress not begging, retort and BJP's attack have put the opposition alliance under a renewed strain. The war of words has now intensified from Ikra Hassan's only Akhilesh pitch to Congress not begging, retort and Akhilesh cryptic warning. The alliance tensions are spilling into the open. The alliance war is now spilling into a public face-off. Akhilesh SP and Rahul Gandhi to decide the pact. Congress has hit back saying it's not begging for an alliance. That's the word coming in from the two sides. And all of this is happening right before the UP elections are less than few months away.
6: Samajwadi party aur Congress party ka gathbandhan jo hai, वो दोनों राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे, अखिलेश जी तय करेंगे. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं, यह केवल दबाव बनाने के लिए आते हैं. कांग्रेस कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यह जगजाहिर है. कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है, और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी।
7: हम अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं। कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में, वो राहुल जी ने तैयार किया है। राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं। पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है। तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है। अरे छोड़िए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं। जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं, बजाने दीजिए ढोल, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है। कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे, बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने क्या हुआ था। देखिए हाल, राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे, हम विष भी पियेंगे, हम लेकर के चलेंगे, हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें।
2: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है, ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है। ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे। इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है, और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें तो उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है।
1: Prime Minister Narendra Modi attended a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on the stage sang devotion songs. Congress has targeted the Prime Minister, alleging that this time he is seen attending a bhajan clubbing event, but he avoids accountability and difficult questions on the public platform.
8: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है। भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है। पर देश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे, उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं, उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना। तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए। प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले, महंगाई बेरोजगारी भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे हैं, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे। तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीज़ों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता है।
9: कांग्रेस इज नेवर अगेंस्ट इंडियन कल्चर, इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ इट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ इट एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। द इशू इज ऑफ पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग to the country and trying to cover up by attending such functions and diverting the mind of people from issues, very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.
1: And just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios and they were also present yesterday at the Bhajan Clubbing event. Here's their take on the event and the political controversy.
10: I heard that Prime Minister was there at Deen Dayal Upadhyay Park and he wo haath mein dafli leke baithe the aur Parvati ka gana chala, Hanuman Ansh ka tha, aur sabhi log jo hain, even the youth, the Gen Z jo hum baat kar rahe hain aaj, ek to Gen Z connect tha wahan pe, Prime Minister bhi the, upar se bhajan clubbing, so ye jo mixture tha, in fact aap bhi the us event pe, kaisa raha aapka experience jab bhajan clubbing ho rahi thi, Prime Minister the wahan pe aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister aur wo jab aaye tab mahol hi badal gaya, the bhajan clubbing जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट?
11: जी, जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है, वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को, और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है, और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना। इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी, वो नहीं है। भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है। हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं।

0: बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं, यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा।
1: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK in its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
2: அன்பாவாலும் குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில்தான்
3: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreactive and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court did not accept and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM, when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon, and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
4: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
1: A political face-off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh's car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
5: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं। ये जो है ये जंगल राज चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था। इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे।
6: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন, পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়। আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন।
7: দেখি, আগর বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা। কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, হামারে উপর বোম ফেঁকে যাতে, আগর সম্ভব হতা তো গ্রেনেড গ্রেনেড ভি ফেঁকতে।
8: কুনাল ঘোষ

0: ऊपर जो हमला हुआ है वो बीजेपी ने नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी का जो अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिलकर बोल दिया है कि कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है। ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये, और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चबाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है।
1: हमें हमें यह विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ। आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था। यह कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए।
2: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है। ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है। ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा।
3: Well, that story and much more goes up on our website ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है
1: जी।
0: हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं। यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा।
2: And shifting our focus, the Veeramani Poxu case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK in its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
3: அன்பவர்களும் குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு ஜெம் வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்வு பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில் தான்
4: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreactive and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court didn't accept and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM, when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
5: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
2: A political face-off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
6: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं। ये जो है ये जंगल रात चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था। इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे।
7: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন। পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন।
8: দেখি আগর বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা कुणाल घोष।

0: Election Commission in terms of SIR was unanimous in nature, but Congress chose to build allegations around manufactured lies and attack the constitutional bodies.
1: Right. Thank you. Thank you, Aishwarya, for getting us all the details on that story. Now, the Election Commission of India held a meeting at Nirvachan Sadan in New Delhi with Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Election Commissioners Dr. S. Sandhu and Dr. Vivek Joshi in attendance. The Election Commission, in its press note, has detailed the timeline of the SIR exercise and said that the relevant decisions were taken with the unanimous approval of the Commission. ECI further said that the SIR orders issued covering Bihar, West Bengal, 30 other states and UTs were unanimously approved. Congress, meanwhile, criticized the EC, describing the situation as a grave assault on Indian democracy. The party alleged that citizens have been deprived of their right to vote and questioned the modification of Form 6. BJP pointed out that three election commissioners held a joint meeting and ECI subsequently highlighted several important points in its public statement.
2: The main reason as to why the election commission went to cabinet secretary was to discuss about a particular officer who had been sent on deputation to the Election Commission of India. मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है.
3: This is an incredibly grave assault on the functioning of Indian democracy. It has been done apparently on the basis of a number of irregularities, including an illegal modification of Form 6, requiring data that has not been required in the past. They have actually gone ahead and made a number of changes without the consent of two of the three election commissioners, which itself is a violation of the procedures of the election commission.
4: Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal, it is anti-constitutional, it is against our nation, our democracy. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason and he needs to be tried for treason.
5: All the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे SIR की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे? कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, CPM गई थी और TMC तो दर्जनों केस किया था उन्होंने. तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIR को ओके कहा.
1: A fresh political flashpoint is brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's scripted warning, Congress not begging, retort and BJP's attack have put the opposition alliance under a renewed strain. The war of words has now intensified from Ikra Hassan's only Akhilesh pitch to Congress not begging, retort and Akhilesh cryptic warning. The alliance tensions are spilling into the open. The alliance war is now spilling into a public face-off. Akhilesh SP and Rahul Gandhi to decide the pact. Congress has hit back saying it's not begging for an alliance. That's the word coming in from the two sides. And all of this is happening right before the UP elections are less than few months away.
6: Samajwadi Party aur Congress Party ka gathbandhan jo hai, वो दोनों राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे, अखिलेश जी तय करेंगे. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं, यह केवल दबाव बनाने के लिए आते हैं. कांग्रेस कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ये जगजाहिर है. कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है. अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है. और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी.
7: हम अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं. कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में, वो राहुल जी ने तैयार किया है. राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं. पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है. तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है. अरे छोड़िए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं. जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं, बजाने दीजिए ढोल, क्या फ़र्क पड़ रहा है. इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है. कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे। बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने क्या हुआ था। देखिए हाल राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे, हम विष भी पियेंगे, हम लेकर के चलेंगे, हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें।
2: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है। ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे। इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें तो उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है।
1: Prime Minister Narendra Modi attended a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deendayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on the stage sang devotion songs. Congress has targeted the Prime Minister alleging that this time he is seen attending a bhajan clubbing event, but he avoids accountability and difficult questions on the public platform.
8: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है। भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है। पर देश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना। तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए। प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले, महंगाई बेरोजगारी भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे हैं, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे। तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीजों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता है।
9: कांग्रेस इज नेवर अगेंस्ट इंडियन कल्चर, इट हैज बीन पार्ट ऑफ इट एंड इट इज पार्ट ऑफ इट एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। द इशू इज ऑफ पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग टू द कंट्री एंड ट्राइंग टू कवर अप by attending such functions and diverting the mind of people from issues, very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.
1: And just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios and they were also present yesterday at the Bhajan Clubbing event. Here's their take on the event and the political controversy.
10: That Prime Minister was there at Deendayal Upadhyay Park and he wo haath mein dafli leke baithe the aur Parvati ka gana chala, Hanuman Ansh ka tha aur sabhi log jo hain, even the youth, the Gen Z jo hum baat kar rahe hain aaj, ek to Gen Z connect tha wahan pe, Prime Minister bhi the, upar se bhajan clubbing, so ye jo mixture tha, in fact aap bhi the us event pe, kaisa raha aapka experience jab bhajan clubbing ho rahi thi, Prime Minister the wahan pe aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister aur wo jab aaye tab mahol hi badal gaya, the bhajan clubbing जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट।
11: जी, जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को, और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है, और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना। इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी वो नहीं है, भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है। हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं, यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा।
1: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK in its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
12: அன்பு குறிப்பிட்டார். அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு ஜெம் வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்வு பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில் தான்
9: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreacted and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court did not accept and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM, when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon, and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
13: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the Chief Minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
1: A political face-off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
14: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल रात चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
15: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন.
16: দেখি আগার বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা. কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, আমার উপর বোম ফেঁকে যাতে আগার সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেঁকতে.
17: কুনাল ঘোষ কে উপর যে হামলা হুয়া হে ও বিজেপি নে নেহি কিয়া হে, কিউকি বিজেপি কা জো অধ্যক্ষ হে और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिल के बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है. ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये, और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चबाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है।
18: हमें ये विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना

0: टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ। आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था। ये कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए।
1: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है। ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है। ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा।
2: Well, that story and much more goes up on our website ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.
3: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
4: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
5: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.

0: why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
1: அன்னோவலும் குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு ஜெம் வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கின்றார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில் தான்
2: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreactive and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court did not accept and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM, when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon, and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
3: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
0: A political face off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh's car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
4: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल राज चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
5: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ. কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন.
6: দেখি আগর বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা. কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, হামারে উপর বোম ফেঁকে যাতে, আগর সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেঁকতে.
7: কুনাল ঘোষ কে উপর যো হামলা হুয়া হে ও বিজেপি নে নেহি কিয়া হে, কিউকি বিজেপি কা যো অধ্যক্ষ হে और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिलकर बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है. ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है. उसका इंटरनल फाइट है ये, और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चबाने के लिए ये सब बोल रहा है. बीजेपी इसमें नहीं है।
8: हमें ये विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ। आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था। ये कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए।
9: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है। ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है। ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा।
0: Well, that story and much more goes up on our website ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.
10: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
11: Control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
12: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
13: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
14: The line of control, Shivaroor, NDTV.

0: Taken with the unanimous approval of the commission. ECI further said that the SIR orders issued covering Bihar, West Bengal, 30 other states and UTs were unanimously approved. Congress meanwhile criticized the EC, describing the situation as a grave assault on Indian democracy. The party alleged that citizens have been deprived of their right to vote and questioned the modification of Form 6. BJP pointed out that three election commissioners held a joint meeting and ECI subsequently highlighted several important points in its public statement.
1: The main reason as to why the election commission went to cabinet secretary was to discuss about a particular officer who had been sent on deputation to the election commission of India. Magar is prakar use Congress party ne dikhaya ki asahmati ke karan charcha hui aur sahmati wale vishay mein bhi aaj election commission of India ke chitti mein spashtata ke sath यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है.
2: This is an incredibly grave assault on the functioning of Indian democracy. It has been done apparently on the basis of a number of irregularities, including an illegal modification of Form 6, requiring data that has not been required in the past. They have actually gone ahead and made a number of changes without the consent of two of the three election commissioners, which itself is a violation of the procedures of the election commission.
3: Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal, it is anti-constitutional, it is against our nation, our democracy. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason and he needs to be tried for treason.
4: All the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे SIR की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे? कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, CPM गई थी और TMC तो दर्जनों केस किया था उन्होंने. तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIR को ओके कहा.
0: A fresh political flashpoint is brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's cryptic warning, Congress not begging, retort and BJP's attack have put the opposition alliance under a renewed strain. The war of words has now intensified from Ikra Hassan's only Akhilesh pitch to Congress not begging, retort and Akhilesh cryptic warning. The alliance tensions are spilling into the open. The alliance war is now spilling into a public face-off. Akhilesh SP and Rahul Gandhi to decide the pact. Congress has hit back saying it's not begging for an alliance. That's the word coming in from the two sides. And all of this is happening right before the UP elections are less than few months away.
5: Samajwadi party aur Congress party ka gathbandhan jo hai, वो दोनों राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे, अखिलेश जी तय करेंगे. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं, यह केवल दबाव बनाने के लिए आते हैं. कांग्रेस कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यह जगजाहिर है. कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है. अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी.
6: हम अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं. कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में, वो राहुल जी ने तैयार किया है. राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं. पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है. तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है. अरे छोड़िए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं. जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं, बजाने दीजिए ढोल, क्या फ़र्क पड़ रहा है. इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है. कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे, बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने क्या हुआ था. देखिए हाल, राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे, हम विष भी पियेंगे, हम लेकर के चलेंगे, हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें.
7: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है. ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे, इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है, और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें तो उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है।
0: Prime Minister Narendra Modi attended a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on the stage sang devotion songs. Congress has targeted the Prime Minister, alleging that this time he is seen attending a bhajan clubbing event, but he avoids accountability and difficult questions on the public platform.
8: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है। भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है। प्रदेश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना। तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए। प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले, महंगाई बेरोजगारी भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे हैं, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे। तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीज़ों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता था।
9: कांग्रेस इज नेवर अगेंस्ट इंडियन कल्चर, इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ इट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ इट एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। द इशू इज ऑफ पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग to the country and trying to cover up by attending such functions and diverting the mind of people from issues, very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.
0: And just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios and they were also present yesterday at the Bhajan clubbing event. Here's their take on the event and the political controversy.
10: That Prime Minister was there at Deen Dayal Upadhyay Park and he wo haath mein dafli leke baithe the aur Parvati ka gana chala, Hanuman Ansh ka tha, aur sabhi log jo hain, even the youth, the Gen Z jo hum baat kar rahe hain aaj, ek to Gen Z connect tha wahan pe, Prime Minister bhi the, upar se bhajan clubbing, so ye jo mixture tha, in fact aap bhi the us event pe, kaisa raha aapka experience jab bhajan clubbing ho rahi thi, Prime Minister the wahan pe aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister aur wo jab aaye tab mahol hi badal gaya, the bhajan clubbing jo एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट?
11: जी, जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को, और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है, और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना। इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी वो नहीं है, भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है। हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं, यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा।
0: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK in its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
12: அன்பும் குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை, நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில் தான் நடிக்கிறார் என்று சொன்னால் நிஜ வாழ்க்கையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்.
13: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreactive and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court did not accept and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
14: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke, and he is saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know, probably this script was prepared prior to our leader's statement.
0: A political face off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh's car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
15: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल रात चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
16: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন.
17: দেখি আগে বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিপ নেই হতা. কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, আমার উপর বোম ফেঁকে যাতে, আগর সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেঁকতে.
18: কুনাল ঘোষ কে উপর যে হামলা হুয়া হে ও বিজেপি নে নেহি কিয়া হে, কিউকি বিজেপি কা জো অধ্যক্ষ হে और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिलकर बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है. ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये. और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चपाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है.
19: हमें यह विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ. आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था. यह कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए.
20: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है। ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है। ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा।
0: Well, that story and much more goes up on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.
21: Voices that redraw boundaries.

0: ECI further said that the SIR orders issued covering Bihar, West Bengal, 30 other states and UTs were unanimously approved. Congress, meanwhile, criticized the EC, describing the situation as a grave assault on Indian democracy. The party alleged that citizens have been deprived of their right to vote and questioned the modification of Form 6. BJP pointed out that three election commissioners held a joint meeting and ECI subsequently highlighted several important points in its public statement.
1: The main reason as to why the election commission went to cabinet secretary was to discuss about a particular officer who had been sent on deputation to the election commission of India. Magar is prakar use Congress party ne dikhaya ki asahmati ke karan charcha hui aur sahmati wale vishay mein bhi aaj election commission of India ke chitti mein spashtata ke sath यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है.
2: This is an incredibly grave assault on the functioning of Indian democracy. It has been done apparently on the basis of a number of irregularities, including an illegal modification of Form 6, requiring data that has not been required in the past. They have actually gone ahead and made a number of changes without the consent of two of the three election commissioners, which itself is a violation of the procedures of the election commission.
3: Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal, it is anti-constitutional, it is against our nation, our democracy. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason and he needs to be tried for treason.
4: All the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे SIR की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे? कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, CPM गई थी और TMC तो दर्जनों केस किया था उन्होंने. तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIR को ओके कहा.
0: A fresh political flashpoint is brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's cryptic warning, Congress not begging, retort and BJP's attack have put the opposition alliance under a renewed strain. The war of words has now intensified from Ikra Hassan's only Akhilesh pitch to Congress not begging, retort and Akhilesh cryptic warning. The alliance tensions are spilling into the open. The alliance war is now spilling into a public face-off. Akhilesh SP and Rahul Gandhi to decide the pact. Congress has hit back saying it's not begging for an alliance. That's the word coming in from the two sides. And all of this is happening right before the UP elections are less than few months away.
5: Samajwadi party aur Congress party ka gathbandhan jo hai, वो दोनों राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे, अखिलेश जी तय करेंगे. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं, यह केवल दबाव बनाने के लिए आते हैं. कांग्रेस कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यह जगजाहिर है. कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है. अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी.
6: हम अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं. कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में, वो राहुल जी ने तैयार किया है. राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं. पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है. तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है. अरे छोड़िए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं. जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं, बजाने दीजिए ढोल, क्या फ़र्क पड़ रहा है. इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है. कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे, बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने क्या हुआ था. देखिए हाल, राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे, हम विष भी पिएंगे, हम लेकर के चलेंगे, हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें.
7: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है, ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है. ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे. इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें तो उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है।
0: Prime Minister Narendra Modi attended a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on the stage sang devotion songs. Congress has targeted the Prime Minister, alleging that this time he is seen attending a bhajan clubbing event, but he avoids accountability and difficult questions on the public platform.
8: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है। भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है। पर देश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना। तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए। प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले, महंगाई बेरोजगारी भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे हैं, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे। तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीज़ों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता है।
9: कांग्रेस इज नेवर अगेंस्ट इंडियन कल्चर, इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ इट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ इट एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। द इशू इज ऑफ पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग to the country and trying to cover up by attending such functions and diverting the mind of people from issues, very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.
0: And just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios and they were also present yesterday at the Bhajan clubbing event. Here's their take on the event and the political controversy.
10: That Prime Minister was there at Deen Dayal Upadhyay Park and he wo haath mein dafli leke baithe the aur Parvati ka gana chala, Hanuman Ansh ka tha, aur sabhi log jo hain, even the youth, the Gen Z jo hum baat kar rahe hain aaj, ek to Gen Z connect tha wahan pe, Prime Minister bhi the, upar se bhajan clubbing, so ye jo mixture tha, in fact aap bhi the us event pe, kaisa raha aapka experience jab bhajan clubbing ho rahi thi, Prime Minister the wahan pe aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister aur wo jab aaye tab mahol hi badal gaya, the bhajan clubbing जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट?
11: जी, जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को, और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है, और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना। इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी वो नहीं है, भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है। हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं, यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा।
0: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK and its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
12: அன்பாவாலும் குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை, நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு ஜெம் வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய். எனக்கு சினிமாவில் தான் நடிக்கிறார் சொன்னால் நிஜ வாழ்க்கையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்.
13: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreacted and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court did not accept and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
14: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke, and he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know, probably this script was prepared prior to our leader's statement.
0: A political face-off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh's car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
15: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल राज चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
16: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন.
17: দেখি, আগে বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা. কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, হামারে উপর বোম ফেঁকে যাতে, আগর সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেঁকতে.
18: কুনাল ঘোষ কে উপর যো হামলা হুয়া হে ও বিজেপি নে নেহি কিয়া হে, কিউকি বিজেপি কা যো অধ্যক্ষ হে और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिलकर बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है. ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये. और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चबाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है.
19: हमें यह विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ. आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था. यह कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए.
20: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है,

0: was to discuss about a particular officer who had been sent on deputation to the Election Commission of India. मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है.
1: This is an incredibly grave assault on the functioning of Indian democracy. It has been done apparently on the basis of a number of irregularities, including an illegal modification of Form 6, requiring data that has not been required in the past. They have actually gone ahead and made a number of changes without the consent of two of the three election commissioners, which itself is a violation of the procedures of the election commission.
2: Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal, it is anti-constitutional, it is against our nation, our democracy. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason and he needs to be tried for treason.
3: All the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट में पूरे SIR की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे? कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, CPM गई थी और TMC तो दर्जनों केस किया था उन्होंने. तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIR को ओके कहा.
4: A fresh political flashpoint is brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's cryptic warning, Congress not begging, retort, and BJP's attack have put the opposition alliance under a renewed strain. The war of words has now intensified from Ikra Hassan's only Akhilesh pitch to Congress not begging, retort, and Akhilesh cryptic warning. The alliance tensions are spilling into the open. The alliance war is now spilling into a public face-off. Akhilesh SP and Rahul Gandhi to decide the pact. Congress has hit back saying it's not begging for an alliance. That's the word coming in from the two sides. And all of this is happening right before the UP elections are less than few months away.
5: Samajwadi party aur Congress party ka gathbandhan jo hai, वो दोनों राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे, अखिलेश जी तय करेंगे. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं, यह केवल दबाव बनाने के लिए आते हैं. कांग्रेस कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यह जगजाहिर है. कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है. अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी.
6: हम अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं. कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में, वो राहुल जी ने तैयार किया है. राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं. पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है. तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है. अरे छोड़िए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं. जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं, बजाने दीजिए ढोल, क्या फ़र्क पड़ रहा है. इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है. कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे. बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने, क्या हुआ था. देखिए हाल, राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे, हम विष भी पियेंगे, हम लेकर के चलेंगे, हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें.
7: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है, ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है. ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे. इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है. और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं. आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है.
4: Prime Minister Narendra Modi attended a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on the stage sang devotion songs. Congressers targeted the Prime Minister, alleging that this time he is seen attending a bhajan clubbing event, but he avoids accountability and difficult questions on the public platform.
8: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है. भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है. पर देश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना. तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए. प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले. महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं. अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे हैं, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे. तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीज़ों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता है.
9: कांग्रेस इज नेवर अगेंस्ट इंडियन कल्चर. इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ इट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ इट एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. द इशू इज ऑफ पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग to the country and trying to cover up by attending such functions and diverting the mind of people from issues, very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.
4: And just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios and they were also present yesterday at the Bhajan Clubbing event. Here's their take on the event and the political controversy.
10: I heard that Prime Minister was there at Deen Dayal Upadhyay Park and he wo haath mein dafli leke baithe the aur Parvati ka gana chala, Hanuman Ansh ka tha, aur sabhi log jo hain, even the youth, the Gen Z jo hum baat kar rahe hain aaj, ek to Gen Z connect tha wahan pe, Prime Minister bhi the, upar se bhajan clubbing, so ye jo mixture tha, in fact aap bhi the us event pe, kaisa raha aapka experience jab bhajan clubbing ho rahi thi, Prime Minister the wahan pe aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister aur wo jab aaye tab mahol hi badal gaya. The bhajan clubbing जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट?
11: जी, जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है, वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को, और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है, और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना. इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी, वो नहीं है. भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है. हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं. यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा.
4: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK and its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
12: குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை, நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு ஜெம் வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்வு பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில்தான் நடிக்கிறார் என்று சொன்னால் நிஜ வாழ்க்கையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்.
13: yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreacted and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court did not accept and after that it came to the view of the current government. A case like this and definitely

0: gone for a highest level of that department as a CM, like CM, when the case was filed or something. Definitely, a person like Veeramani, who is a very big icon, and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
1: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
2: A political phase off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
3: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल राज चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
4: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে
5: देखिए, अगर बीजेपी का सरकार नहीं बन के तृणमूल का सरकार होता तो आज सुकांत मजुमदार के गाड़ी आक्रांत सिर्फ नहीं होता, कुणाल घोष के ऊपर तो अंडा फेंका गया, हमारे ऊपर बम फेंके जाते, अगर संभव होता तो ग्रेनेड भी फेंकते.
6: कुणाल घोष के ऊपर जो हमला हुआ है वो बीजेपी ने नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी का जो अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिलकर बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है. ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये, और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चबाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है.
7: हमें यह विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ. आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था. यह कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए.
8: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है. ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है. ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा.
2: Well, that story and much more goes up on our website ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: avoids accountability and difficult questions on the public platform.
1: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है. भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है. पर देश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना. तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए. प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार, तरीके की चीजों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता है.
2: कांग्रेस इज नेवर अगेंस्ट इंडियन कल्चर. इट हैज बीन पार्ट ऑफ इट एंड इट इज पार्ट ऑफ इट एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. द इशू इज ऑफ पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग टू द कंट्री एंड ट्राइंग टू कवर अप बाय अटेंडिंग सच फंक्शंस एंड डाइवर्टिंग द माइंड ऑफ पीपल फ्रॉम इशूज. Very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.
0: And just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios and they were also present yesterday at the Bhajan Clubbing event. Here's their take on the event and the political controversy.
3: I heard that Prime Minister was there at Deen Dayal Upadhyay Park and he wo haath mein dafli leke baithe the aur Parvati ka gana chala, Hanuman Ansh ka tha, aur sabhi log jo hain, even the youth, the Gen Z jo hum baat kar rahe aaj, ek to Gen Z connect tha wahan pe, Prime Minister bhi the, upar se bhajan clubbing, so ye jo mixture tha, in fact aap bhi the us event pe, kaisa raha aapka experience jab bhajan clubbing ho rahi thi, Prime Minister the wahan pe aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister aur wo jab aaye tab mahol hi badal gaya. To bhajan clubbing जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट?
4: जी, जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को, और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है, और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना. इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी वो नहीं है. भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है. हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं. यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा.
0: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK and its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
5: குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை, நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்வு பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்து சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில் தான்
2: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreactive and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court did not accept and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM, when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon and he has access to all higher political power centers.

0: and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeram.
1: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
2: A political face-off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh's car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
3: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल राज चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
4: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন.
5: দেখি আগর বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা. কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, আমার উপর বোম ফেঁকে যাতে, আগর সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেঁকতে.
6: কুনাল ঘোষ কে উপর যে হামলা হুয়া হে ও বিজেপি নে নেহি কিয়া হে, কিউকি বিজেপি কা জো অধ্যক্ষ হে और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिलकर बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है. ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये. और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चबाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है.
7: हमें यह विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ. आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था. ये कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए.
8: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है. ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है. ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा.
2: Well, that story and much more goes up on our website ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.
9: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
10: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
11: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.

0: actually gone ahead and made a number of changes without the consent of two of the three election commissioners, which itself is a violation of the procedures of the election commission.
1: Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal, it is anti-constitutional, it is against our nation, our democracy. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason and he needs to be tried for treason.
2: All the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे? कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, सीपीएम गई थी और टीएमसी तो दर्जनों केस किया था उन्होंने। तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को ओके कहा।
3: A fresh political flashpoint is brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's cryptic warning, Congress not begging, retort, and BJP's attack have put the opposition alliance under a renewed strain. The war of words has now intensified from Ikra Hassan's only Akhilesh pitch to Congress not begging, retort, and Akhilesh cryptic warning. The alliance tensions are spilling into the open. The alliance war is now spilling into a public face-off. Akhilesh SP and Rahul Gandhi to decide the pact. Congress has hit back saying it's not begging for an alliance. That's the word coming in from the two sides. And all of this is happening right before the UP elections are less than few months away.
4: Samajwadi Party aur Congress Party ka gathbandhan jo hai, वो दोनों राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे, अखिलेश जी तय करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं यह केवल दबाव बनाने के लिए आते हैं। कांग्रेस कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में यह जगजाहिर है। कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी।
5: हम अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं। कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में वो राहुल जी ने तैयार किया है। राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं। पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है। तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है। अरे छोड़िए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं। जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं, बजाने दीजिए ढोल, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है। कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे, बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने क्या हुआ था। देखिए हाल, राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे, हम लेकर के चलेंगे, हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें।
6: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है। ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे। इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है।
3: Prime Minister Narendra Modi attended a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on the stage sang devotion songs. Congress has targeted the Prime Minister, alleging that this time he is seen attending a bhajan clubbing event, but he avoids accountability and difficult questions on the public platform.
7: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है। भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है। पर देश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना। तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए। प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले, महंगाई महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे। तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीज़ों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता था।
8: This is never against Indian culture. It has been part of it and it is part of it and it will remain part of Indian culture and tradition. The issue is of people who are doing wrong to the country and trying to cover up by attending such functions and diverting the mind of people from issues, very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.
3: And just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios and they were also present yesterday at the Bhajan Clubbing event. Here's their take on the event and the political controversy.
9: That Prime Minister was there at Deen Dayal Upadhyay Park and he wo haath mein dafli leke baithe the aur Parvati ka gana chala, Hanuman Ansh ka tha, aur sabhi log jo hain, even the youth, the Gen Z jo hum baat kar rahe hain aaj, ek to Gen Z connect tha wahan pe, Prime Minister bhi the, upar se bhajan clubbing, so ye jo mixture tha, in fact aap bhi the us event pe, kaisa raha aapka experience jab bhajan clubbing ho rahi thi, Prime Minister the wahan pe aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister aur wo jab aaye tab mahol hi badal gaya, to bhajan clubbing jo एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट?
10: जी, जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है, वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को, और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है, और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना। इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी, वो नहीं है। भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है। हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं। यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा।
3: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK in its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
11: அன்பு குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை, நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்வு பிரச்சாரம் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில் தான்
8: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreactive and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court did not accept and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM, when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
12: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. he gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from

0: any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
1: A political phase off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
2: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल रात चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विद डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
3: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ. কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন.
4: দেখি আগর বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা. কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, হামারে উপর বোম ফেঁকে যাতে, আগর সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেঁকতে.
5: কুনাল ঘোষ কে উপর যো হামলা হুয়া হে ও বিজেপি নে নেহি কিয়া হে, কিউকি বিজেপি কা যো অধ্যক্ষ হে और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिलकर बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है. ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये. और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चपाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है.
6: हमें यह विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ. आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था. यह कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए.
7: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है. ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है. ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा.
1: Well, that story and much more goes up on our website ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: Amid Congress versus SP rift ahead of UP elections, say sword should remain sheathed until the battle begins. And India completed a golden double in Kabaddi with both men and women team beating Iran in their respective final. Women won 37-34. Men defeated Iran 40-34 to retain their Asian Games title. The latest news coming in, the BJP President Nitin Naveen has backed Election Commission's clarification that decisions related to the SIR were taken unanimously by the full commission. His remarks come amid opposition criticism following reports of objections raised by two election commissioners during internal deliberation. The ECI has maintained that such observations are part of normal decision-making process and that the final decisions were unanimous. My colleague Aishwarya with us on the broadcast. Aishwarya, give us perspective. BJP president making a statement on the latest EC press note.
1: Well, that's right. In fact, Bharatiya Janata Party had earlier stated that, remember, in Kerala, the minister in charge over there, who is a Congress leader, in fact, backed the SIR process, and several of their Congress leaders, including Shashi Tharoor as well, backed the SIR process. But it is the Congress leadership who had been showing hypocrisy in a sense when the same electoral process delivers victories to Congress and its allies, including the states of Kerala and Tamil Nadu. Its credibility is readily accepted. But when the people's mandate goes against them, then certainly they question the constitutional validity of the commissions like Election Commission, who works according to the democracy and its rules and regulations. So Nitin Naveen, Bharatiya Janata Party President, after the press note that was issued by the Election Commission of India, which stated that every such decision has been taken unanimously. In fact, a picture was released today after a meeting that was held between the three election commissioners. It is Nitin Naveen who stated that the opposition has once again been exposed for misleading the public. Certainly, the decisions that were made by the Election Commission in terms of SIR was unanimous in nature, but Congress chose to build allegations around manufactured lies and attack the constitutional bodies.
0: Right. Thank you. Thank you, Aishwarya, for getting us all the details on that story. Now, the Election Commission of India held a meeting at Nirvachan Sadan in New Delhi with Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Election Commissioners Dr. S. Sandhu and Dr. Vivek Joshi in attendance. The Election Commission, in its press note, has detailed the timeline of the SIR exercise and said that the relevant decisions were taken with the unanimous approval of the Commission. ECI further said that the SIR orders issued covering Bihar, West Bengal, 30 other states and UTs were unanimously approved. Congress, meanwhile, criticized the EC, describing the situation as a grave assault on Indian democracy. The party alleged that citizens have been deprived of their right to vote and questioned the modification of Form 6. BJP pointed out that three election commissioners held a joint meeting and ECI subsequently highlighted several important points in its public statement.
2: The main reason as to why the Election Commission went to Cabinet Secretary was to discuss about a particular officer who had been sent on deputation to the Election Commission of India. मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है.
3: This is an incredibly grave assault on the functioning of Indian democracy. It has been done apparently on the basis of a number of irregularities, including an illegal modification of Form 6, requiring data that has not been required in the past. They have actually gone ahead and made a number of changes without the consent of two of the three election commissioners, which itself is a violation of the procedures of the Election Commission.
4: Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal, it is anti-constitutional, it is against our nation, our democracy. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. this is treason and he needs to be tried for treason.
5: All the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट में पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे? कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, सीपीएम गई थी और टीएमसी तो दर्जनों केस किया था उन्होंने। तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को ओके कहा।
0: A fresh political flashpoint is brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's cryptic warning, Congress not begging, retort and BJP's attack have put the opposition alliance under a renewed strain. The war of words has now intensified from Ikra Hassan's only Akhilesh pitch to Congress not begging, retort and Akhilesh cryptic warning. The alliance tensions are spilling into the open. The alliance war is now spilling into a public face-off. Akhilesh SP and Rahul Gandhi to decide the pact. Congress has hit back saying it's not begging for an alliance. That's the word coming in from the two sides. And all of this is happening right before the UP elections are less than few months away.
6: Samajwadi Party aur Congress Party ka gathbandhan jo hai, वो दोनों राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे, अखिलेश जी तय करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं यह केवल दबाव बनाने के लिए आते हैं। कांग्रेस कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में यह जगजाहिर है। कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी।
7: हम अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं। कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में वो राहुल जी ने तैयार किया है। राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं। पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है। तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है। अरे छोड़िए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं। जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं, बजाने दीजिए ढोल, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है। कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे, बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने क्या हुआ था। देखिए हाल, राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे, हम विष भी पियेंगे, हम लेकर के चलेंगे, हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें।
8: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है। ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे। इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें तो उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है।
0: Prime Minister Narendra Modi attended a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on the stage sang devotion songs. Congress has targeted the Prime Minister, alleging that this time he is seen attending a bhajan clubbing event, but he avoids accountability and difficult questions on the public platform.
9: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है। भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है। पर देश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना। तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए। प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले, महंगाई बेरोजगारी भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे हैं, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे। तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीजों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता है।
10: कांग्रेस इज नेवर अगेंस्ट इंडियन कल्चर, इट हैज बीन पार्ट ऑफ इट एंड इट इज पार्ट ऑफ इट एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। द इशू इज ऑफ पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग टू द कंट्री एंड ट्राइंग टू कवर अप by attending such functions and diverting the mind of people from issues, very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.
0: And just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios, and they were also present yesterday at the Bhajan Clubbing event. Here's their take on the event and the political controversy.
11: I heard that Prime Minister was there at Deen Dayal Upadhyay Park and he wo haath mein dafli leke baithe the aur Parvati ka gana chala Hanuman Ansh ka tha aur sabhi log jo hain even the youth the Gen Z jo hum baat kar rahe aaj ek to Gen Z connect tha wahan pe Prime Minister bhi the upar se bhajan clubbing so ye jo mixture tha in fact aap bhi the us event pe kaisa raha aapka experience jab bhajan clubbing ho rahi thi Prime Minister the wahan pe aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister aur wo jab aaye tab mahol hi badal gaya to bhajan clubbing जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट
12: जी जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इन्जॉय कर रहे हैं भजन को और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी वो नहीं है भारत के जो जेंजीज हैं तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है हम छोटे हैं या तो बड़े हैं छोटे बड़ों का आदर करते हैं बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा
0: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK and its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
13: அன்பவர்களும் குறிப்பிட்டார் அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு ஜெம் வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார் ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்வு பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்தை சொன்னது அப்பட்டமான பொய் இன்னைக்கு சினிமாவில் தான்
14: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreactive and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court didn't accept and after that it came to the view of the current government. A case like this and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani who is a very big icon and he has access to all higher political power center and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
15: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
0: A political face off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
16: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल रात चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
17: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন.
18: দেখি আগর বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা. কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, হামারে উপর বোম ফেঁকে যাতে, আগর সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেঁকতে.
19: কুনাল ঘোষ কে উপর যো হামলা হুয়া হে ও বিজেপি নে নেহি কিয়া হে, কিউকি বিজেপি কা যো অধ্যক্ষ হে और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिल के बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है. ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये. और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चबाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है.
20: हमें यह विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया है हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ. आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था. ये कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए.
21: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है. ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है. ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा.
0: Well, that story and much more goes up on our website ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.
22: Voices that redraw boundaries.